102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का गुना केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 4 जुलाई सन 2026 सुबह के 5:57 हुए हैं। अब हमारी प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: FM 102.3 MHz पर ये आकाशवाणी का गुना केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में होंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज।
2: प्राइम मिनिस्टर विल आल्सो बी विजिटिंग।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इसके बाद वे बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। वे चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 125A के 4 लेन वाले हिस्से को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सानंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरुआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्राइम मिनिस्टर विल आल्सो बी विजिटिंग
2: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक

0: ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
1: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और कार्बो वर्डे 3-2 गोल की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का गुना केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम भक्ति धारा। आरंभ करते हैं हरिओम शरण की गाई इस भक्ति रचना से।

श्री राम का नाम भजने वाले अर्थार्थी चार प्रकार के बताए गए हैं। धन संपत्ति की चाह वाले, संकट से मुक्ति पाने की चाह रखने वाले, परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु तथा ज्ञानी अर्थात भगवान के तत्व से परिचित सहज प्रेम मात्र प्रेम से भजने वाले, ये सभी पुण्यात्मा की संज्ञा के अधिकारी हैं। राम शब्द के दो अक्षर वर्षा ऋतु के सावन भादो महीनों की तरह मधुर और मनोहर हैं। ये वर्णमाला रूपी शरीर के दो नेत्र हैं, कहने सुनने और स्मरण करने में अत्यंत सहज सरल और सुंदर नर नारायण की भांति सुंदर भाई, जो जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने इन दो अक्षरों की तुलना भक्ति रूपिणी सुंदर कामिनी के कानों के आकर्षक आभूषण कर्णफूल से की है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान में आज का प्रसंग, कलाकार थी अनुराधा पौड़वाल। यह आकाशवाणी का गुना केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंजनी। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं उर्मिला देवी शर्मा और साथियों के गाए पारंपरिक बुंदेली लोकगीत।

0: मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे, जिसकी कुल लागत 13,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन के निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। आज शाम प्रधानमंत्री गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल तक $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10-11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एचएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने के लिए काम कर रहे थे। जांच में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन से फंडिंग का भी पता चला है। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने सरकार और भारतीयों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का गुना केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री

अभी 7:21 पर सुबह सवेरे कार्यक्रम होगा, जिसमें आप सुनेंगे फिल्म संगीत के साथ कुछ सूचनाएं। पर्यावरण पत्रिका कार्यक्रम वसुंधरा का प्रसारण होगा सुबह 8:30। प्रस्तुत करता होंगे राजकुमार कौशल।

सुबह 9 बजे आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई का कार्यक्रम और सुबह 9:30 बजे होगा एक फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित होगा गीतकार आनंद बख्शी पर। प्रस्तुति प्रवीण शर्मा की होगी। जिले की चिट्ठी सुबह 10 बजे हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। फोन इन प्रोग्राम हेलो एफएम गुना का प्रसारण सुबह 10:05 पर हमारे केंद्र से होगा। प्रस्तुत करता होंगे राजकुमार कौशल और दिन में 11 बजे से आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के विविध कार्यक्रम।

सुगम संगीत में कुछ भक्ति रचनाएं हम आपके लिए लेकर आएंगे शाम 6 बजे। शाम 5:10 पर दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे संस्कार सरिता कार्यक्रम, इसमें आप सुनेंगे देशगान, और 5:30 से विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे। आज के शाम कार्यक्रम में फिल्मी गाने आप सुन सकते हैं शाम 6:30 से।

प्रायोजित किसान वाणी कार्यक्रम शाम 7:21 पर होगा। इसमें पशुपालन से अधिक लाभ कैसे लें, इस विषय पर बातचीत होगी। साथ ही चर्चा होगी खरीफ फसलों में सामयिक कार्य पर। भेंट वार्ता भी इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे और कुछ बुंदेली लोकगीतों का प्रसारण भी इस कार्यक्रम में किया जाएगा। रात 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में, जिसे हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

रात 8:15 फिल्म संगीत का प्रसारण हमारे केंद्र से होगा और रात 9:00 से कार्यक्रम विविध भारती के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। ये था विवरण आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का।

0: ये आकाशवाणी का गुना केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को हैं, थोड़ी ही देर में होंगे प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात दौरे पर, दोनों राज्यों को देंगे करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल ने की सौजन्य भेंट, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज से 2 दिवसीय प्रदेश दौरे पर, इंदौर में करेंगे बीएलओ कॉन्फ्रेंस को संबोधित। और प्रदेश में देर रात 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले, शहडोल और शाजापुर सहित कई जिलों में बदले गए एसपी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर रहेंगे। यहां वे दोनों राज्यों को करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। वे जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत 100 नए एरोड्रोम विकसित किए जाएंगे। इसके बाद बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिस पर करीब 80,000 रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे और राजस्थान सरकार में भर्ती हुए करीब 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। शाम को वे गुजरात के साणंद पहुंचेंगे, जहां 7,500 करोड़ रुपए की लागत से बनी सीजी सेमी OS-80 सेमी कंडक्टर सुविधा का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा करेंगे। वे पहले इंडोनेशिया में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मुलाकात करेंगे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता और सीईओ फोरम में शामिल होंगे। यात्रा के अंतिम चरण में वे न्यूजीलैंड की राजकीय यात्रा करेंगे, जो 4 दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। इस दौरान वे तीनों देशों में भारतीय प्रवासी समुदाय को भी संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण कुछ हिस्सों में कम वर्षा की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय को राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर किसानों को उपयुक्त फसलों की सलाह देने के निर्देश दिए। उन्होंने जल संसाधन विभाग को जल भंडारों की निगरानी और विद्युत मंत्रालय को बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से कल जर्मनी के 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मंत्रालय में सौजन्य भेंट की। इस दौरान ऊर्जा क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जर्मनी के सहयोग से प्रदेश एक ऊर्जा दक्ष, हरित और समृद्ध राज्य बनेगा। KfW बैंक ने बताया कि एनर्जी रिफॉर्म प्रोग्राम के तहत स्मार्ट मीटर स्थापना के लिए करीब 1120 करोड़ रुपए का वित्त पोषण किया जा रहा है। बैंक ने फेज 2 के तहत विद्युत वितरण अधोसंरचना के लिए करीब 2200 करोड़ रुपए के वित्तीय सहयोग में भी रुचि दिखाई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज से 2 दिवसीय प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। पदभार संभालने के बाद ये उनका पहला प्रदेश का दौरा है। पहले दिन वे इंदौर में लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बीएलओ कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और 5 जिलों के 1500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों से संवाद करेंगे। इसके बाद वे ओंकारेश्वर और महेश्वर के धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्य सरकार ने देर रात 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं, जिनमें शहडोल और शाजापुर के पुलिस अधीक्षक भी बदले गए हैं। संजय कुमार अग्रवाल को शहडोल और प्रियंका शुक्ला को शाजापुर का नया एसपी बनाया गया है। सागर, नर्मदापुरम और भोपाल ग्रामीण में भी नए आईजी की पदस्थापना की गई है, जिसमें मिथिलेश शुक्ला को सागर रेंज

और चंद्रशेखर सोलंकी को नर्मदापुरम जोन का आईजी बनाया गया है। वहीं रुचिवर्धन मिश्रा को आईजी ग्रामीण जोन भोपाल की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने कल नई दिल्ली में बोर्ड ऑफ ट्रेड की बैठक में शिरकत की। उन्होंने कहा कि भारत को 2030-31 तक $2 ट्रिलियन निर्यात लक्ष्य तक पहुंचाने में प्रदेश अग्रणी भूमिका निभाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में देश का पहला पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जा रहा है, जहां 26,000 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश समझौते हो चुके हैं। मंत्री ने इंदौर में टेक्सटाइल टेस्टिंग फैसिलिटी और जबलपुर रीवा में नए आईसीडी स्थापित करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए 13 स्थानों पर करीब 12,000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत अब तक हुए कार्यक्रमों की समीक्षा की। डॉ. यादव ने कहा कि किसानों का कल्याण राज्य सरकार का कर्तव्य है, इसी उद्देश्य से वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया गया है। उन्होंने सहकारी समितियों की प्रक्रियाओं का डिजिटलाइजेशन करने के भी निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि ऑनलाइन किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल और ई पासबुक सुविधा का शुभारंभ जुलाई माह में ही किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव और संभागीय मुख्यालय पर फूड फेस्टिवल आयोजित किए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण में चंदी की कथित अनियमितताओं को लेकर 2 अक्टूबर से उज्जैन के महाकाल मंदिर से अयोध्या तक करीब 1000 किलोमीटर की पदयात्रा करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यात्रा पूरी तरह गैर राजनीतिक होगी, इस दौरान वे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बालाघाट जिले के किरनापुर थाना क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाके में फंसे 16 ग्रामीणों को पुलिस, एसडीआरएफ और हॉकफोर्स के संयुक्त अभियान से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। मूसलाधार बारिश के कारण ग्राम भानपुर में खेत में गए ग्रामीण अचानक बढ़ते जलस्तर से चारों ओर से घिर गए थे। समय पर की गई कार्रवाई से किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। प्रदेश के 19 जिलों में आज अति भारी या भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बड़वानी और खंडवा में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, धार सहित कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि इंदौर, देवास और सीहोर में भारी बारिश का अनुमान है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 श्रृंखला का दूसरा मैच आज मैनचेस्टर में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। पहला मैच चेस्टरले स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। श्रृंखला का तीसरा मैच 7 जुलाई को नॉटिंघम और अंतिम 2 मैच ब्रिस्टल और साउथहैम्पटन में खेले जाएंगे। इसके बाद भारत इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला भी खेलेगा। आपको समाचार संक्षेप में। केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके आज छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। वे जिले में विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों और बैठक में सहभागिता करेंगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला आज कटनी जिले के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सेफ क्लिक अभियान 2.0 के तहत इंदौर जिले के मानपुर में पुलिस ने कल शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं मंदसौर पुलिस SP विनोद कुमार मीणा ने भी कल साइबर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सार्थक ऐप में डॉक्टरों और स्टाफ द्वारा नियम विरुद्ध अटेंडेंस लगाने की गड़बड़ी पाए जाने पर CMHO भोपाल ने कार्रवाई की है। आगर मालवा जिले में आयोजित रोजगार मेले में 62 शिक्षित बेरोजगार युवाओं का रोजगार के लिए प्रारंभिक चयन किया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के अंतर्गत सतना जिले के 262 श्रद्धालुओं को लेकर विशेष ट्रेन कल हरिद्वार ऋषिकेश के लिए रवाना की गई। शिवपुरी जिले के कोलारस पीठ सनवारा में वन विभाग द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान अवैध जुताई में प्रयुक्त 2 ट्रैक्टर और 2 कल्टीवेटर जब्त कर संबंधित पर वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है। देवास के सिवनी अभयारण्य में आपसी संघर्ष में घायल हुए नरबाघ युवराज का भोपाल के वन विहार रेस्क्यू सेंटर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उपचार किया जा रहा है। जांच में बाघ के आगे के दोनों पैरों में फ्रैक्चर और पिछले बाएं पैर में गहरा घाव पाया गया है, जिस पर 6 टाके लगाए गए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

93FM। आकाशवाणी गुना से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे, लेकर हाजिर है आपका दोस्त प्रवीण शर्मा। सभी को नमस्कार। श्रोताओ, फिल्मी गीत और सूचनाओं के इस कार्यक्रम का आगाज हम फिल्मी गीत से कर रहे हैं। ये गीत है अभिमान फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार SD बर्मन।

लता मंगेशकर और बाबला मेहता के स्वर में फिल्म चांदनी से। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार शिवहरी।

0: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे।
1: इतनी वफादारी, आजकल कौन सोचता है ये सब। जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
2: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से एचआईवी एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे एचआईवी एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे?
1: हाँ भाई समझा।
2: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
3: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
4: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
5: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
4: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
5: तो फिर सही नंबर,
4: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
5: आपने तो बचा लिया दीदी।
4: काम से नहीं।
6: आरबीआई कहता है,
7: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
8: पीएम सूर्य घर योजना के तहत घरों में रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने पर केंद्र सरकार 1 किलोवाट पर 30,000, 2 किलोवाट पर 60,000 और 3 किलोवाट पर या उससे अधिक क्षमता के संयंत्र पर 78,000 रुपए तक सब्सिडी दे रही है। योजना में आवेदन pmsuryghar.gov.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए संबंधित बिजली वितरण कंपनी की वेबसाइट, उपाय ऐप, व्हाट्सएप चैटबॉट और टोल फ्री नंबर 1912 पर संपर्क किया जा सकता है। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि बैंक खाते, आधार कार्ड और बिजली बिल में नाम एक समान रखें और केवल अधिकृत वेंडर से ही सोलर संयंत्र लगवाएं। आइए इस जानकारी के बाद हम सुनते हैं चुपके चुपके फिल्म का गीत लता मंगेशकर के स्वर में।

आईटीआई भी प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। महिलाओं को प्रवेश शुल्क में 25% की छूट मिलेगी। राहत की बात यह भी है कि पिछले वर्षों की तरह इस बार भी प्रवेश शुल्क 2 किस्तों में जमा किया जा सकेगा। महिला आईटीआई के सुजीत चौहान और एके श्रीवास्तव ने बताया कि पंजीयन जारी है। प्रथम चरण की चयन सूची 8 जुलाई को जारी की जाएगी। आइए इस सूचना के बाद कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार के स्वर में आनंद बख्शी के बोल हैं आर डी बर्मन का संगीत। फिल्म का नाम है बेताब।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाने से पहले आपको एक सूचना और दे दें। शनिवार को सुबह 11:30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में मालाबार नीम की उन्नत खेती पर विशेष सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। पर्यावरणविद जयप्रकाश सोनी किसानों को मालाबार नीम की वैज्ञानिक खेती, कम लागत में अधिक लाभ, लकड़ी और अन्य उत्पादों की व्यावसायिक उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण में इसकी भूमिका और प्रति एकड़ लाखों रुपए तक की संभावित आय के संबंध में जानकारी देंगे। खेती की संपूर्ण तकनीकी प्रक्रिया पर चर्चा की जाएगी। इस सूचना के बाद कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं एक दूजे के लिए फिल्म से। लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम का स्वर है, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत करेलाल का संगीत।

जिले में 1 जून से अब तक 175.1 मिलीमीटर औसत दर्ज वर्षा दर्ज की गई है, जो सामान्य वर्षा का 16.6% है। गत वर्ष इसी अवधि में 327 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी। जिले की वर्षा ऋतु में सामान्य औसत वर्षा 1053.5 मिलीमीटर है। अधीक्षक भू अभिलेख के अनुसार 3 जुलाई की सुबह 8 बजे तक जिले के वर्षा मापी केंद्र में गुना में 87.6 मिलीमीटर, बमोरी में 144, आरोन में 192, राघुगढ़ में 135, चाचौड़ा में 229, कुंभराज में 163, मधुसूदनगढ़ में 276.2 मिलीमीटर वर्षा, जिले में बीते 24 घंटे में 13.3 मिलीमीटर वर्षा हुई। इस अवधि में गुना में 5.8 मिलीमीटर, बमोरी में 9, आरोन में 2, राघुगढ़ में 2, चाचौड़ा में 2 और कुंभराज में 40 और मधुसूदनगढ़ में 32 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। तो मौसम की इस जानकारी के बाद कार्यक्रम का अंतिम गीत आपके लिए, ये गीत है बॉर्डर फिल्म से सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज है, जावेद अख्तर के बोल, अनु मलिक का संगीत है।

0: सुबह सवेरे कार्यक्रम में बस इतना ही। अब अपने दोस्त प्रवीण शर्मा को दें अनुमति। नमस्कार, ये आकाशवाणी गुना है। थोड़ी देर में समाचार प्रभात हम दिल्ली से रिले करेंगे।
1: प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात

0: जनपद के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में फैली हुई हैं। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जो देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक सीजी सेमी ऑसेट सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहाँ निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
3: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए, ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है।

0: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10 से 11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होला लेस्क्यूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मोसल्ला में आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबफ, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के 2रे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को 2रे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों की ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबू

0: प्री को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले 2 दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की बैठक में 52,000 करोड़ रुपए के सौदे स्वीकृत, हिंदुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन टैंक मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ता लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ता ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट BMS जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने 3 तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला 3 तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ ना करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है, अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects in Rajasthan and Gujarat today to inaugurate country's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex in Balotra. Gujarat anti-terrorist squad arrests 8 people associated with Pakistan-based terror outfit Jaish-e-Mohammed. Centre reviews below normal rainfall situation and potential drought conditions in certain areas across country due to El Nino. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Maharashtra and Odisha for today. In FIFA World Cup, Argentina enter round of 16 after defeating Cabo Verde in a thrilling 3-2 encounter at Miami. Egypt also cruise into pre-quarterfinals. And men in blue to take on England in second T20 in Manchester this evening.

किसी भी उद्योग या व्यवसाय में ही नहीं, शौकिया रूप से किए जाने वाले कार्य में भी पूर्ण सफलता प्राप्त करने, निरंतर रुचि बनाए रखने व आनंद प्राप्त करते रहने के लिए यह परम आवश्यक है कि कार्य का प्रारंभ उचित ढंग से किया जाए। सही प्रारंभ ही सफलता की प्रथम शर्त है। बागवानी में भी, चाहे वे शौकिया रूप से की जाए या आर्थिक लाभ की दृष्टि से, भवन को भव्यता प्रदान करने के लिए किया जाए या प्रकृति के सानिध्य में रहने के लिए, अपने और परिवार के स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से की जाए या यूं ही वक्त गुजारने के लिए, रुचि के अनुकूल पौधों का चुनाव जरूरी है। प्राप्त स्थान, आर्थिक क्षमता और देखरेख में लगाए जाने वाले समय के अनुरूप सही वर्ग के पौधों का चुनाव ही आपको आनंद व संतोष प्रदान कर सकता है। इसी प्रकार अच्छी नस्ल के ऋतु अनुकूल और स्वस्थ पौधे खरीदकर या उगा

कर ही वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। पौधों के चुनाव में की गई जरा सी भी भूल या लापरवाही न केवल आपके संपूर्ण श्रम पर पानी फेर देगी, वरन यह कहने और सोचने पर मजबूर हो जाए कि पौधे क्या लगाए कि एक आफत मोल ले ली। यद्यपि सभी पौधे वातावरण को हरा भरा और वायुमंडल को शुद्ध व ताजा बनाते हैं और फल व फूल भी प्रदान करते हैं, परंतु प्रत्येक पौधे की कुछ विशिष्ट उपयोगिताएं भी होती हैं। कुछ पौधे मुख्य रूप से फूलों की प्राप्ति के लिए लगाए जाते हैं तो कुछ फलों की प्राप्ति के लिए। कुछ के फूल तीव्र गंध युक्त होते हैं तो कुछ के पत्ते अत्यंत सुंदर। कुछ पौधों में तीव्र सुगंध होती है तो कुछ में ना सुगंधित फूल उगते हैं ना ही उनमें सुगंध होती है, परंतु उनका धार्मिक महत्व होता है। नीचे पौधों की उपयोगिताओं के आधार पर हम आपको बताएंगे कि उनकी उपयोगिता का चुनाव आप कैसे करें।

लगभग सभी पौधों में, चाहे वे फलों के हों या सब्जियों के, परंतु यहाँ फूल के पौधों से तात्पर्य उन पौधों से है जिन पर सुंदर रंग बिरंगे सुगंध युक्त और नयनाभिराम पुष्प लगते हैं। इन पर या तो फल लगते ही नहीं, और लगते भी हैं तो वे लगभग अनुपयोगी ही होते हैं। गुलाब, चंपा, चमेली, गेंदा आदि सभी फूलों के पौधे व वृक्ष इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। सभी फलों व तरकारियों के वृक्ष, पौधे व बेले इसी वर्ग में आते हैं। इन्हें बहुधा ताजा फल व सब्जियां प्राप्त करने के लिए किचन गार्डन के रूप में उगाया जाता है, या फिर व्यावसायिक रूप से फलों के बगीचों के रूप में। टमाटर, मिर्ची, धनिया, सेम, मटर आदि इस वर्ग के कुछ ऐसे पौधे हैं जो गमलों में भी उगाए जा सकते हैं। वैसे इन्हें क्यारियों में ही उगाना चाहिए। गत 3-4 वर्षों में इस प्रकार के पौधे बहुत ही लोकप्रिय हो गए हैं। इनके पत्तों पर लाल, पीले, श्वेत या अन्य रंगों के सुंदर धब्बे या निशान होते हैं। ये पौधे सदाबहार होते हैं और गमलों में लगाकर बालकनी, कॉरिडोर या ड्राइंग रूम में रखे जाते हैं। यद्यपि अधिकांश पुष्पों में सुगंध होती है, चाहे वह तीव्र हो या मध्यम, परंतु कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके पत्ते और शाखाएं और तने तक में तीव्र सुगंध का वास होता है। जब इन पौधों को हिला दिया जाता है तो उन पर पानी छिड़क दिया जाता है या मात्र छू लिया जाता है, तभी तीव्र सुगंध का एक झोंका सा उठता है। अति प्राचीन काल से ही लगभग प्रत्येक हिंदू परिवार में तुलसी का पौधा उगाया जाता है। सुबह महिलाएं इन पर जल चढ़ाती हैं और शाम को दीप जलाकर आरती करती हैं। इनकी पत्ती को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। केले की भी पूजा की जाती है और बड़ या बरगद तथा पीपल के वृक्षों की भी। इन्हें लगाने का मुख्य उद्देश्य पूजा करना ही होता है, घर का सौंदर्य बढ़ाना नहीं, और फूल तो इन पर आते ही नहीं। यद्यपि लगभग प्रत्येक पौधे, लता, वृक्ष में कुछ न कुछ औषधीय गुण होते हैं। तुलसी की पत्तियां चाय के साथ उबालकर पीने से सर्दी जुकाम से राहत मिलती है, तो गेंदे का पुष्प और पत्तियों को पीसकर गर्म करने के बाद फोड़े या फुंसी पर बांधने से आराम मिलता है। परंतु बहुत से पौधे मात्र औषधीय गुण के कारण भी उगाए जाते हैं। मरुआ और सुदर्शन, जिसे पंजाब में पामरी और अरबी भाषा में मरगे जूस तथा अंग्रेजी में स्वीट मारोजोन कहते हैं, उसकी पत्तियां काली मिर्च और अनारदाने के साथ चटनी के साथ पीस कर खाने से पुराने से पुराना अतिसार और कब्ज नष्ट हो जाता है। तो यह तो मेरे अनुभव की बात है, वैसे वैद्य व अनुभवी बुजुर्ग इस बारे में बहुत कुछ जानते हैं। यदि आप इस प्रकार की अधिक जानकारी चाहते हैं तो देहाती पुस्तक भंडार, चावड़ी बाजार, दिल्ली द्वारा प्रकाशित पुस्तक देहाती इलाज या जड़ी बूटी से इलाज का अध्ययन अवश्य करें। आप मात्र अपनी रुचि और उपयोगिता के आधार पर ही पौधे व वृक्ष और लताओं का चुनाव नहीं कर सकते। आपके पास फुलवारी के लिए कितना स्थान है, या आप मात्र गमलों में ही पौधे उगाना चाहते हैं, यह तथ्य आपके मनपसंद चुनाव में बड़ी बाधा के रूप में उपस्थित हो सकता है। वृक्षों के लिए बहुत अधिक स्थान चाहिए और लताओं के लिए काफी कम। अतः आप वही पौधे चुनें जिन्हें आप अपने यहाँ पर आसानी से लगा सकते हैं। पौधे कोई निर्जीव वस्तु नहीं है जिसे खरीदा और एक और रख दिया। उन्हें खाद पानी की आवश्यकता तो होती ही है, साथ ही उन्हें उचित देखभाल, सांस संभाल, निराई गुड़ाई और समय समय पर कटाई छटाई तथा दवा के छिड़काव आदि की भी आवश्यकता होती है। कुछ पौधे

पौधे बहुत नाजुक होते हैं, जिन्हें प्रतिदिन, प्रति सप्ताह निराई गुड़ाई, प्रतिमास खाद तथा जल्दी जल्दी कटाई छटाई की आवश्यकता पड़ती है। गुलाब, मोतिया, मोगरा, लिली, मोर पंखी आदि इसी वर्ग में आते हैं। इसके विपरीत कुछ पौधे हटी किस्म के और कष्ट सहिष्णु होते हैं, जिन्हें आप मात्र पानी देते रहिए, दो चार माह में खाद डाल दीजिए और जब फुर्सत मिल जाए हल्की सी गुड़ाई कर दीजिए, जैसे कि मनी प्लांट आदि।

और कैक्टस जैसे गमले लगाकर ही अपना शौक पूरा करने के लिए विवश हैं। यदि आप या आपके परिवार के सदस्यों में पौधों को देने के लिए पर्याप्त समय है या आप माली की व्यवस्था कर सकते हैं तो ही आप नाजुक पौधे लगाएं, नहीं तो उनकी हत्या का पाप भी आपको ही लगेगा। फूलों के पौधे व वृक्ष लगाना या सुंदर सुंदर गमले व पात्रों में रंग बिरंगे पौधे लगाना आपके लिए कोई आय का साधन नहीं, एक शौक या हॉबी है। पौधों के चुनाव में उनके पात्रों का चुनाव की भी बहुत अहम भूमिका होती है। तुलसी, मरुआ, मनी प्लांट जैसे सामान्य पौधे और गेंदा, सदाबहार, मोतिया और जंगली व देशी गुलाब जैसे साधारण फूलों जहां 1 से 10 रुपए में आपको मिल जाते हैं, वहीं काले गुलाब या एक ही पौधे के 7-5 रंग देने वाले गुलाब का पौधा आपको 500-600 रुपए से कम नहीं मिलता। चटाई घास सैकड़ों रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से भी मिल सकती है, तो गुल दोपहरी और दूब घास लगभग बिना मूल्य के सहज ही प्राप्त हो सकती है। सामान्यतः मध्यम क्वालिटी के अंग्रेजी गुलाबों, अधिकांश प्रजातियों के कैक्टसों, रंग बिरंगे पत्तों, फैंसी पौधे, अधिकांश फूल पौधे ऋतु के अनुरूप ही आप उनका चयन करें।

रखने के लिए जल की आवश्यकता होती है और उन्हें लगाने के लिए मिट्टी की। यदि आपके पास क्षेत्र की मिट्टी बहुत अधिक क्षार युक्त या रेतीली है तो उसमें पौधे उगाना आपको मुश्किल ही पैदा करेगा। इसी प्रकार कुछ पौधे रेत युक्त मिट्टी में अधिक बढ़ते हैं तो कुछ दुर्मुट मिट्टी में। यद्यपि अपने बागिया दूसरे स्थान पर मंगाकर भिन्न भिन्न किस्म की मिट्टी मिलाकर खाद का अनुपात घटा बढ़ाकर आप किस सीमा तक मिट्टी के गुण बदल सकते हैं, परंतु पूरे तौर पर मिट्टी के गुण बदलना या सारी ही मिट्टी बदल डालना यह व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है। उदाहरण के लिए कैक्टस रेतीली मिट्टी में अच्छे उगते हैं तो मोर पंखी व भारी मिट्टी में। इसी प्रकार के मोर पंखी, मनी प्लांट, केले को बहुत अधिक पानी चाहिए तो कैक्टस व दोपहिया और गेंदे को बहुत ही कम। यही नहीं, अपनी बगिया में किस ओर और कितनी धूप आती है या जहां आप इस गमले को रखेंगे वहां दिन में कितने समय धूप रहती है, इसका ध्यान भी पौधों का चुनाव करते समय आपको रखना ही चाहिए। गुलाब, मनी प्लांट और अधिकांश फूलों के पौधे गर्मी के समय में तेज गर्मी सहन नहीं कर पाते और सूख जाते हैं। इसके विपरीत कैक्टस और गुल दोपहरी के पौधे तेज धूप में भी स्वस्थ रहते हैं। यदि इन्हें कम समय या हल्की धूप मिल जाए तो ये मर भी सकते हैं। यही नहीं, रबर प्लांट और रंग बिरंगे पत्ते और सजावटी पौधे मनी प्लांट की लताएं छाया में ही अच्छे चलते हैं। थोड़ी अधिक धूप या गर्म हवा लगने पर ये झुलस जाते हैं, परंतु पौधों के स्वाभाविक गुण के विपरीत बंद कमरे में भी जीवित बने रहते हैं। आज नगर और कस्बों और महानगरों में रहने वाले हम लोग के पास इतना स्थान होता ही कहाँ है। यहाँ वहाँ से कोई पौधा लेकर कहीं भी लगा लिया और उगा लिया।

अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण पत्रिका कार्यक्रम वसुंधरा। प्रस्तुतकर्ता थे राजकुमार कौशल। यह आकाशवाणी का गुना केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला कार्यक्रम विविध भारती मुंबई से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

ये कैसा इश्क है, धड़क टू फिल्म का गीत रोचक कोहली और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे। गुरुप्रीत सैनी ने इस गीत को लिखा था, रोचक कोहली ने इस गीत की धुन बनाई थी। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। एक और ब्रेक छोटा सा।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अब हम आपको मोहरा फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। आवाजें उदित नारायण अलका याग्निक की हैं।

मोहरा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें उदित नारायण, अलका याग्निक की थी, आनंद बख्शी के बोल थे, विजू शाह का संगीत था। दोस्तों, बरसात की पहली फुहार जब धरती को छूती है तो मिट्टी की सौंधी सी खुशबू मन को नई नई ऊर्जा से भर देती है। यही मौसम हमें प्रकृति के सबसे अनमोल उपहार वृक्षों का, पेड़ पौधों का, वनों का याद दिलाता है। इसीलिए हर वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। पेड़ हमें केवल छाया ही नहीं देते बल्कि हमारी सांसों के, हमारे जीवन के सच्चे साथी हैं। वे हमें प्राण वायु देते हैं, वर्षा के चक्र को संतुलित रखते हैं, मिट्टी का संरक्षण करते हैं और तमाम जीव जंतुओं का आश्रय भी बनते हैं। आज जब जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण की चुनौती हमारे सामने है, तब एक पौधा लगाना कितना जरूरी है। ये पर्यावरण की सेवा होगी। अगर प्रत्येक घर में हर एक इंसान या हर घर में एक कोई व्यक्ति एक पेड़ लगाता है अपने पूरे जीवन में, तो सोचिए कितने पेड़ हो जाएंगे। तो चलिए अब हम आपको ये गाना सुनवा रहे हैं। ये आवाजें सुनिधि चौहान, कुणाल गांजावाला की।

0: सुनिधि चौहान और कुणाल गांजावाला की आवाजों में आप सुन रहे थे रूबरू फिल्म का गीत। सोनिक सेन ने इस गीत को लिखा था।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमा।

0: भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है कि एक और छोटा सा ब्रेक लिया जाए, उसके बाद फिर से हाजिर हो जाएंगे।

भूल भुलैया 3 फिल्म का गीत आप सोनू निगम की आवाज में और साथियों की आवाजों में सुन रहे थे। समीर ने इस गीत को लिखा था, अमाल मलिक और प्रीतम ने मिलकर इस गीत की धुन बनाई थी। दोस्तों आज है 4 जुलाई, इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हर वर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सहकारिता को बढ़ावा देना और ये बताना कि मिलजुल कर काम करने से समाज, अर्थव्यवस्था और जीवन अधिक सशक्त बनता है। एक अकेला इंसान जिस काम को थोड़ी अधिक समय में कर सकता है, वही काम साथ मिलकर कम समय में किया जा सकता है और साथ मिलकर सफलता तय करना ये बताना है। जब व्यक्ति अपने हित के साथ समाज के हित को भी महत्व देता है तब विकास का रास्ता मजबूत होता है। आइए संकल्प लें, सहयोग और साझेदारी की इस भावना को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। वर्ष 2026 की ये थीम है, शांतिपूर्ण विश्व के लिए सहकारिता। ये थीम समाज में न्याय और एकजुटता को बढ़ावा देने में सहकारी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती है। सुनते हैं हम ये गाना।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

गदर टू फिल्म का गीत आप उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में सुन रहे थे। इस गीत को संगीत से सजाया था मिथुन ने। आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं तक, आपसे आज्ञा चाहते हैं आज का कार्यक्रम समाप्त करने की। दीजिए इजाजत सविता सिंह को। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।

हम आकाशवाणी के गुना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक फनकार। श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है गीतकार आनंद बख्शी पर। इस खूबसूरत सफर में मैं हूं आपका साथी प्रवीण शर्मा। सभी को नमस्कार। हम आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात कर रहे हैं जिसने 4 दशकों तक अपने शब्दों से करोड़ों दिलों को धड़काया, जिन्होंने प्यार को नई परिभाषा दी तो जुदाई के गम को भी बेहद आसान लफ्जों में पिरोया। जी, हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के सबसे कामयाब और चहेते गीतकार आनंद बख्शी साहब की। बख्शी साहब का लिखना सिर्फ गाना नहीं था बल्कि आम इंसान के दिल की बात थी। आइए इस सुरीले सफर की शुरुआत करते हैं उनके लिखे इस सदाबहार तराने के साथ।

वाह, कितना खूबसूरत गीत है। इन पंक्तियों में खुद आनंद बख्शी साहब की जिंदगी का फलसफा छुपा हुआ है। 21 जुलाई 1930 को रावलपिंडी में जन्मे बख्शी साहब को बचपन से ही लिखने और गाने का शौक था, लेकिन उनकी किस्मत उन्हें पहले सेना में ले गई। उन्होंने कुछ समय रॉयल इंडियन नेवी और फिर सेना में नौकरी की, मगर दिल तो दिल्ली और मुंबई के सिनेमाई ख्वाबों में अटका था। साल 1956 में वो मुंबई आ गए। शुरुआत बेहद मुश्किल थी, मरीन ड्राइव के फुटपाथ पर रातें गुजारी। आखिरकार साल 1958 में भगवान थॉमस की फिल्म भला आदमी से उन्हें पहला ब्रेक मिला, लेकिन कामयाबी की असली सीढ़ी अभी बाकी थी। आइए सुनते हैं उनका लिखा एक ऐसा गीत जो आज भी हर महफिल की जान है।

सुन रहे हैं ना आप, कितनी सादगी थी उनके शब्दों में। रोजमर्रा की बातचीत को गाना बना देना सिर्फ आनंद बख्शी साहब के बस की बात ही, और जब इन सादे शब्दों को संगीत के सुर दिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने तो इतिहास रच दिया। दोस्तों, आनंद बख्शी साहब के करियर में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का एक ऐसा अटूट पन्ना है जिसके बिना उनका जिक्र अधूरा है। इस तिकड़ी ने हिंदी सिनेमा को 300 से ज्यादा फिल्मों में लगभग 1500 से अधिक गीत दिए। ये दुनिया की सबसे लंबी और सबसे कामयाब म्यूजिकल पार्टनरशिप में से एक है। लक्ष्मी जी और प्यारेलाल जी हमेशा कहते थे कि बख्शी साहब के लिखे गीतों में एक मीटर एक धुन छुपी होती है, जिसे संगीत में ढालना बेहद आसान हो जाता है। चाहे बॉबी के चुलबुले गाने हो, मिलन का संजीदा संगीत, मंजिल मंजिल के नगमे हो, इस तिकड़ी ने हर मिजाज का जादू बिखेरा। आइए सुनते हैं इसी कमाल की जुगलबंदी से निकला एक और अमर गीत।

0: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
1: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
0: मतलब?
1: मतलब ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रमक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हो।
2: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: आनंद बख्शी साहब ने न सिर्फ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बल्कि RD बर्मन, SD बर्मन, कल्याण जी आनंदी और हर दौर के दिग्गज संगीतकारों के साथ बेहतरीन तालमेल बिठाया। बख्शी साहब की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वे जटिल उर्दू या क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग नहीं करते थे। वे उस भाषा में लिखते थे जिसे एक आम रिक्शा वाला भी समझ सके और एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर भी। उन्होंने अपने पूरे करियर में लगभग 4000 से ज्यादा गीत लिखे, 40 बार फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नामांकित उन्हें किया गया और 4 बार उन्होंने ये ट्रॉफी अपने नाम भी की। सुपरस्टार राजेश खन्ना के दौर से लेकर अमिताभ बच्चन और फिर शाहरुख खान के दौर तक बख्शी साहब हर पीढ़ी के लिए पसंदीदा बने रहे। आइए सुनते हैं जिंदगी के सच को बयां करता उनका यह बेहद खूबसूरत गहरा गीत।

जो नाम कट गए वो नाम नहीं आते। बख्शी साहब भले ही 30 मार्च 2002 को इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनके लिखे शब्द और नाम कभी मिट नहीं सकते। अपने आखिरी दिनों में उन्होंने दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ताल, मोहब्बतें और गदर एक प्रेम कथा जैसी फिल्मों के लिए गाने लिखे, जिन्हें आज की युवा पीढ़ी भी गुनगुनाती है। वो एक ऐसे फनकार थे जिन्होंने 4 दशकों तक भारतीय सिनेमा के संगीत को जिंदा रखा। जब तक इस दुनिया में संगीत रहेगा, प्यार रहेगा, तब तक आनंद बख्शी हमारे दिलों में धड़कते रहेंगे। दोस्तों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। अब अपने दोस्त प्रवीण शर्मा को अनुमति दीजिए और सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए बख्शी साहब का ये सदाबहार नगमा।

0: इस गीत के साथ ही एक फनकार कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का गुना केंद्र है, 10 बजने को है। थोड़ी ही देर में जिले की चिट्ठी हम भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।
1: जिले की चिट्ठी आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है। भिंड जिले की चिट्ठी, आलेख अनिल शर्मा, वाचन स्वर दीपा सिंह। भिंड में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा महाअभियान की शुरुआत हो गई है। कृषि विभाग ने किसानों को योजना की जानकारी देते हुए 31 जुलाई तक फसल बीमा कराने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा है कि कम बारिश की आशंका को देखते हुए बीमा किसानों के लिए सुरक्षा कवच साबित होगा। जिले में किसानों को प्रीमियम बीमा कवरेज और दावा प्रक्रिया की भी जानकारी दी जा रही है। जिले में बीबी जी राम जी योजना का जिला स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम कम्युनिटी हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। इस योजना के तहत रोजगार गारंटी अब 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। जल संरक्षण की दिशा में भिंड के उमरी गांव का उमरेश्वर तालाब अब नई पहचान बन रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत तालाब से गाद, जलकुंभी और झाड़ियां हटाई गई हैं। इससे बारिश का पानी बेहतर तरीके से रुकेगा, गांव के लोगों को साफ पानी मिल सकेगा। ग्रामीणों ने श्रमदान कर अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जल संरक्षण का संकल्प भी लिया। भिंड जिले के शासकीय छात्रावासों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग की सुविधा शुरू की जा रही है। गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, कंप्यूटर और अन्य विषयों की पढ़ाई के लिए योग्य शिक्षकों से 20 जुलाई तक आवेदन मांगे गए हैं। कोचिंग का संचालन सुबह और शाम दोनों समय होगा। भिंड के आईटीआई महाविद्यालय में 30 एमपी बटालियन एनसीसी द्वारा आयोजित 10 दिवसीय संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें भिंड, मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी जिले के 350 कैडेट्स ने भाग लिया। शिविर में कैडेट्स को हथियार संचालन, निशानेबाजी, नागरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया। समारोह का समापन मेडल वितरण के साथ हुआ, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को सम्मानित किया गया। जिला पंचायत भिंड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी वीर सिंह चौहान ने वित्तीय अनियमितताओं के चलते मेहगांव और भिंड की ग्राम पंचायतों के 11 पदाधिकारियों पर कुल 48,81,000 रुपए जमा कराने का आदेश दिया है। भिंड कलेक्टर ने मछली प्रजनन काल को देखते हुए 16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु काल घोषित किया है। इस दौरान नदियों और जलाशयों में मत्स्य खेत पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नियम का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए तक जुर्माना या 1 वर्ष का कारावास या दोनों का प्रावधान है। मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता का जिला स्तरीय आयोजन 7 अगस्त को भिंड में होगा। इसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सरकारी और निजी स्कूलों के विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। हर स्कूल से 3 विद्यार्थियों की टीम बनाई जाएगी और ऑनलाइन पंजीयन कराया जाएगा। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रदेश की संस्कृति और पर्यटन तथा विरासत से जोड़ना है।

भिंड जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अभियान के तहत जन्म से 5 साल तक के करीब 2,70,000 बच्चों को पोलियो की 2 बूंद दवा पिलाई जाएगी। इसके लिए जिले भर में 2,248 बूथ और हजारों स्वास्थ्यकर्मी तैनात किए गए हैं। जिला प्रशासन और जिला रोजगार कार्यालय द्वारा शासकीय एमजीएस महाविद्यालय में युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले में कुल 153 आकांक्षी युवाओं ने पंजीयन कराया, जिनमें से 6 कंपनियों द्वारा 122 आवेदकों का प्राथमिक चयन किया गया। मेगांव में आयोजित कुकिंग प्रतियोगिता में महिलाओं ने पारंपरिक और आधुनिक व्यंजनों का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने विजेताओं को सम्मानित किया। उन्होंने महिलाओं के हुनर को स्वरोजगार से जोड़ने पर जोर दिया और सभी को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। मंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन महिलाओं के आत्मविश्वास और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा मेगांव के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में विद्यार्थियों को मुफ्त साइकिल और मेधावी छात्र छात्राओं को ई स्कूटी वितरित की गई। ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि इससे दूर दराज के छात्रों को स्कूल आने जाने में सुविधा होगी। उन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। प्रदेश सरकार की एमएसएमई प्रोत्साहन योजना छोटे उद्यमियों की सफलता की कहानियां कर रही है। गिरोंगी इंफ्रा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के संचालक प्रमोद गुर्जर ने बताया है कि सब्सिडी की मदद से प्लांट विस्तार से उत्पादन क्षमता दुगुनी हुई है, जिससे अब लगभग 150 लोगों को स्थायी रोजगार मिल रहा है। वहीं मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में सोनू धाकड़ और पूजा धाकड़ ने सोनाधिका एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना कर काजू प्रोसेसिंग में सफलता हासिल की, जिनके तैयार उत्पाद यूएई तक निर्यात होते हैं। इस इकाई में भी प्रत्यक्ष रूप से 50 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है और एमएसएमई योजना के तहत मिले अनुदान ने उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद की है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे भिंड जिले की चिट्ठी, यह आकाशवाणी भोपाल है।
1: FM 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का गुना केंद्र है। लीजिए सुनिए फोन इन प्रोग्राम हेलो FM गुना, प्रस्तुत करता है राजकुमार कौशल।

0: हेलो एफएम गुना।
1: अरे जय सियाराम भाई साहब।
0: जय सियाराम, कौन बोल रहे हैं, नाम बताएं अपना।
1: मैं सुरेंद्र प्रताप दुबे बोल रहा हूँ, जैसे शॉर्ट में एसपी दुबे लिखता हूँ।
0: अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: हाँ सर, मैं जो है मैकेनिक हूँ सर, जो है इलेक्ट्रिक का जो है कोई भी उपकरण हो, वाशिंग मशीन है, मिक्सी है, गारंटी से रिपेयरिंग करते हैं।
0: जी जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: और गाय है हमारे पास में 10-15।
0: जी जी,
1: और उनकी सेवा करते हैं सवेरे शाम।
0: जी, अच्छा करते हैं काम आप तो, लेकिन ये कहाँ से बात कर रहे हैं आप बताएंगे?
1: मैं श्री राम कॉलोनी गुना मध्य प्रदेश।
0: अच्छा, श्री राम कॉलोनी से बोल रहे हैं
1: ना सर।
0: तो बताएं सुरेंद्र प्रताप जी।
1: सर जो है 62 का हो गया हूँ सर जो है, लेकिन अभी काम में जो है रुचि है जो है इलेक्ट्रिक लाइन में सर जो है वो नहीं छूट रही है।
0: नहीं नहीं, करते रहिए, काम करते रहेंगे तो हम फिट बने रहते हैं।
1: हाँ नहीं, दिमाग चलता रहता है, नहीं तो दिमाग सुन्न हो जाता है इस उम्र पे सर।
0: नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, काम तो करते ही रहना चाहिए।
1: हाँ सर, मैं जो है उपकार फिल्म की जो है गाना सुनना चाहता हूँ सर।
0: तो उपकार फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: अरे वो है ना, कौन सा है, आसमां के उड़ने वाले पंछी।
0: अच्छा
1: हाँ सर,
0: तो ठीक है दुबे जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत, और फोन करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: जी कौन बोल रहे हैं?
1: गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोला श्रीमान जी मनोज नामदेव।
0: अरे वाह मनोज जी।
1: जी हाँ सर, कैसे हो सर?
0: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: बिल्कुल सर, मैं तो बढ़िया हूँ, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं बहुत अच्छा हूँ सर।
0: जी क्या करते हैं मनोज जी आप?
1: जी जी सर बिल्कुल सर, मेरा एक शॉप है
0: जी,
1: सिलाई वाली जो मशीन होती है सर, टेलर हैं सर, वो चलाते हैं।
0: अच्छा, टेलरिंग का काम करते हैं, कपड़े सिलते हैं?
1: बिल्कुल सर बिल्कुल
0: जी। तो कपड़े कौन से, जेंट्स के सिलते हैं कि महिलाओं के?
1: सर जी जेंट्स लेडीज सभी कपड़े सिलते हैं सर हमारे।
0: अच्छा,
1: पास
0: सभी कपड़े सिलते हैं और साथ में रेडियो चलता रहता है?
1: बिल्कुल सर, क्या कहें, आकाशवाणी गुना के कार्यक्रम लगातार सुनते हैं और आकाशवाणी गुना स्टूडियो और आप लोगों से इतना अपार प्रेम हो चुका है, इतना अपार प्रेम हो चुका है कि मैं बयां नहीं कर सकता।
0: जो भी आपका भी प्रेम है जो हमें बराबर आप फोन लगाते हैं और अपनी फरमाइश बताते हैं
1: जी, और कहते हैं कि दोनों हाथों से ताली बजती है, तो आप जितनी भी अनाउंसर हो सभी श्रोताओं को इतना प्यार करते हो, इतना इसने प्यार देते हो सर कि क्या कहें, रह नहीं पाते आपके बिना।
0: तो मनोज जी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी सर जी, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनवा दो, फिल्म का नाम रहेगा साजन और उसमें एक गाना आए हैं देखा है पहली बार, साजन की आंखों में प्यारे हैं गाने के बोल।
0: बिल्कुल मनोज जी, सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत मनपुरा में।

0: हेलो एफएम गुना।
1: हेलो सर जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बात कर रही हैं
1: जी? मैं बरगढ़ जिला ओडिशा से सन प्रभा बोल रही हूँ।
0: अरे सन प्रभा जी, आप तो हमारी नियमित श्रोता हैं, तो सन प्रभा जी आज बताएं, आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: जी आज गाना सुनेंगे। अभी तो बारिश का मौसम आ गया है, बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है, तो सब अच्छा लगता है, तो बारिश के ऊपर एक गाना सुनेंगे।
0: बिल्कुल सुनवाएंगे
1: जी। गाना फिल्म का नाम है सर
0: जी।
1: फिल्म का नाम गाना सुनेंगे कुमार सानू की आवाज में
0: जी।
1: और जी गाने के बोल है, सुन सुन सुन बरसात की धुन, सुन सुन सुन सुन बरसात की धुन, सुन बिजली चमकी लिपट गए हम, बादल गरजा सिमट

0: हेलो।
1: हेलो FM गुना, कौन बोल रहे हैं?
0: जी सर नमस्कार।
1: नमस्कार जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: सर मैं ग्राम संधा तहसील बाणगुड़ा जिला मंदसौर से मनोहर लाल मेहर बोल रहा हूँ सर।
1: अरे मंदसौर से बोल रहे हैं मनोहर लाल जी?
0: हाँ जी सर।
1: आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं।
0: जी बिल्कुल सर, नियमित श्रोता है सर। आप जानते हो मुझे तो।
1: जी जी। अच्छा मनोहर लाल जी, ये बताएं आपके यहाँ मानसून आ गया?
0: ये मानसून तो क्या, अभी बदल हो रहे हैं, हवा चल रही ठंडी, पर आस पास पानी गिर रहा है। इधर हमारे यहाँ इधर पानी नहीं गिर रहा है सर।

0: अच्छा चलो जल्दी मानसून आएगा, लगभग मध्य प्रदेश में सब जगह मानसून आ गया है।
1: मौसम तो बन रहा है सर।
0: जी जी जी।
1: और पानी आएगा जब के?
0: नहीं नहीं आएगा, पानी आएगा जल्दी, मानसून सक्रिय होगा। और मनोहर लाल जी क्या करते हैं आप?
1: मैं तो सोसाइटी में काम करता हूँ सर, वो प्रधानमंत्री जी के 5 किलो गेहूँ मिलते हैं ना।
0: अच्छा अच्छा सोसाइटी में करते हैं।
1: सोसाइटी में काम करता हूँ।
0: और आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनने का समय मिल जाता है आपको
1: क्या सर?
0: हमारे आकाशवाणी गुना के कार्यक्रम कब सुन पाते हैं आप?
1: मैं तो सर ये जब भी ये प्रोग्राम आता है आपका हेलो आकाशवाणी, इसको सुनता हूँ।
0: हाँ जी।
1: और बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, वो शाम को किसान वाणी आता है वो भी सुनता हूँ आपको।
0: जी तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: सर गीत तो वो शाम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम।
0: बिल्कुल बहुत ही प्यारा गीत सुना है आपने, पसंद किया है, तो सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत। फोन करने के लिए
1: धन्यवाद सर,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो एफएम गुना।
1: हेलो नमस्ते सर।
0: नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं
1: जी? मैं कैलाश सेन गांव रचेरा सर।
0: अच्छा, कैलाश सेन गांव रचेरा
1: जी।
0: तेरे चेहरा कहाँ है भैया?
1: जी मावन के पास में। अच्छा, सर मावन पगारे के पास।
0: मावन पगारे के पास। तो क्या करते हैं कैलाश जी आप?
1: खेती करते हैं।
0: अच्छा, खेती बाड़ी है
1: और मवेशी एक जो भैंस है गई है।
0: अच्छा अच्छा, पशुपालन भी करते हैं, खेती भी करते हैं। और इस समय पानी बरस रहा है?
1: पानी बरस गया, मक्का बो गई, 8-8 दिन की हो गई हमारी।
0: अच्छा अच्छा, बोनी हो गई आपकी, बहुत बढ़िया। तो कैलाश जी, खेती के साथ साथ आकाशवाणी गुना के कार्यक्रम भी आप सुनते हैं?
1: हाँ सर, डेली सुन रहे हैं, सब पूरे प्रोग्राम सुनते हैं और बड़े अच्छे लगते हैं।

0: सा कार्यक्रम सबसे अच्छा लगता है?
1: सबसे भी तो सब बढ़िया ही हैं, आज के फनकार हैं और जो किसान वाणी हैं, और सबसे अच्छा तो जो लगता है हेलो फरमाइश।
0: अच्छा, सबसे अच्छा जो हेलो एफएम गुना लगता है आपको?
1: हाँ जी सर।
0: तो बताएं आज के कार्यक्रम के माध्यम से आपकी पसंद का गीत कौन सा है जो आप सुनना चाहते हैं?
1: सर फिल्म का नाम है थोड़ी सी बेवफाई
0: जी।
1: गाने के बोल हैं बरसे बुहार कांच की बूंद बरसे जैसे बरसे बुहार।
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का गीत ग्राम रेछेरा में।

0: हेलो एफएम गुना।
1: हेलो आकाशवाणी एफएम गुना।
0: जी कौन बोल रहे हैं?
1: परम आदि महोदय, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से आपको करता हूँ सादर नमस्कार।
0: अरे वाह वाह, शारदा प्रसाद जी हैं मथुरा से?
1: जी सर बिल्कुल आपने सही पहचाना।
0: अरे वाह, आप तो हमारे नियमित श्रोता हैं।
1: जी मैं नियमित श्रोता हूँ और एक निश्चित अंतराल के पश्चात ही आपसे वार्तालाप करता हूँ, जिससे कि दूसरे श्रोताओं को मौका भी मिले और आपके नियम का जो खंडन है वो भी ना हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शारदा प्रसाद जी क्या करते हैं आप?
1: मानवर मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, घर पे रहता हूँ बच्चों के साथ में और थोड़ी सी आंखों में दृष्टिहीनता की भी समस्या आ गई है, जिसके कारण कि मैंने अपने आकाशवाणी और रेडियो का साथी बना लिया है और रेडियो के साथ जुड़ा रहता हूँ, आप लोगों से वार्तालाप करता हूँ, अच्छा लगता है अपनी फरमाइश का गीत सुनकर।
0: बहुत बढ़िया। तो आप

0: कायम सेवा में थे साहब?
1: विद्युत मंडल में।
0: अच्छा, विद्युत मंडल में थे। और आप तो रेडियो श्रोता संघ, ब्रज रेडियो श्रोता संघ चलाते हैं।
1: जी जी, मैंने इसका स्थापना किया था।
0: नहीं, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। नहीं, बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहे हैं। और आप तो रहते भी ब्रज में ही हैं।
1: जी जी, मैं वैसे मूल रूप से रीवा मध्य प्रदेश का निवासी हूँ।
0: जी जी,
1: और छत्तीसगढ़ चला गया। वहाँ छत्तीसगढ़ में सेवाएं प्रदान करने के पश्चात रिटायरमेंट मैंने ले लिया। वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेके घर पे रहता हूँ। और बच्चे जॉब में आ गए हैं, मथुरा में रहते हैं, इस वजह से हम भी मथुरा में आ गए हैं।
0: बहुत बढ़िया। तो आज बताएं प्रजापति जी, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मानवर, आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है वक्त, महेंद्र कपूर और आशा भोसले ने गीत को गाया है।
0: जी।
1: हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए, बहुत ही सुंदर सुरीला
0: गीत, बहुत ही प्यारा गीत है। और आपको आपकी पसंद पर सुनवाते हैं मथुरा में आपका गीत। और फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो एफएम गुना।
1: हेलो
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: हम गुना से बोल रहे हैं, लूसन के बगीचा।
0: अच्छा, लूसन के बगीचा से बोल रहे हैं गुना से। तो आप कौन बोल रहे हैं, अपना नाम बताएं।
1: हमारा नाम है लखन सिंह केवट।
0: अरे लखन सिंह जी बोल रहे हैं
1: जी।
0: अच्छा, तो लखन सिंह जी बताएं कि आज इस माध्यम से, रेडियो के माध्यम से आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: तुमसे अच्छा कौन है?
0: अच्छा, फिल्म का नाम मालूम है आपको?
1: सर भूल गए फिल्म का नाम, तो आप गाना सुना दो।
0: बिल्कुल सुनवाते हैं लखन सिंह जी आपको आपकी पसंद का ये गीत। और फोन करने के लिए बहुत बहुत

0: हेलो एफएम गुना।
1: हेलो हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
1: कैलाश यादव, बड़ोदिया कैलाश।
0: अच्छा, कैलाश यादव जी बोल रहे हैं
1: जी।
0: तो आप तो हमारे निमिष होता है।
1: हाँ जी।
0: तो कैलाश जी, क्या करते हैं समय आप, क्या कर रहे हैं?
1: किसानी, मक्का बो रही सर।
0: अच्छा, मक्का की बोनी हो गई। अच्छा, तो अब मुझे बताएं कि आज इस कार्यक्रम में आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कल जो आएगा।
0: अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारा गीत है। तो सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का गीत ग्राम बड़ोदिया में, और फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो एफएम गुना
1: जी सर, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
1: संतोष कुमार दुर्गा जी बोल रहा हूँ सामने।
0: अरे वाह, संतोष जी बोल रहे हैं?
1: हाँ जी, संतोष दुर्गा बोल रहा हूँ, ग्राम खेजरा से।
0: अरे वाह, तो संतोष जी क्या करते हैं आप?
1: आप खेती बाड़ी करते हैं?
0: अच्छा, खेती बाड़ी करते हैं, और खेती बाड़ी के साथ साथ आकाशवाणी गुना के प्रोग्राम भी सुनते हैं?
1: हाँ जी सर।
0: चलो ठीक है, तो संतोष जी बताएं भाई, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: सर गदर पलंग सुनना है
0: जी।
1: गदर पलंग, गदर का।
0: अच्छा, गदर का गीत सुनेंगे?
1: हाँ जी।
0: गीत के बोल मालूम है, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: उसका तो कोई सा सुना सब अच्छे हैं साहब।
0: अच्छा, कोई भी गीत सुना दें?
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: तो ठीक है, सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का गीत, और फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो एफएम गुना जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मेरा शुभ नाम है अमित शर्मा
0: जी। अमित शर्मा बोल रहे हैं
1: जी।
0: तो अमित शर्मा जी, क्या करते हैं आप?
1: मैं प्राइवेट जॉब में हूँ गुना में।
0: अच्छा, प्राइवेट जॉब करते हैं, और प्राइवेट जॉब के साथ आकाशवाणी गुना के कार्यक्रम सुनने का अवसर मिल जाता है?
1: जी हाँ बिल्कुल।
0: ठीक है, तो आज इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मैं आशिकी फिल्म से है, पुरानी आशिकी जो जिसमें कुमार शानू के संगीत दिए गाने गाए हुए थे जिसमें।
0: जी,
1: एक सनम चाहिए।
0: जी, एक सनम चाहिए। तो बिल्कुल सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत अमित जी। ठीक है, फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

दोस्तों आप सुन रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम हेलो एफएम गुना। आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं से बातचीत कर रहे थे प्रवीण दुबे। कार्यक्रम को बनाने में तकनीकी सहयोग था मुकेश चौहान का, प्रस्तुति सहयोग था हरिशंकर शिभरे का और प्रस्तुतकर्ता थे राजकुमार कौशल।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन प्रोग्राम हेलो एफएम गुना, प्रस्तुत करता थे राजकुमार कौशल। यह आकाशवाणी का गुना केंद्र है। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम होगा विविध भारती मुंबई से।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था दूसरा आदमी। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे राजेश रोशन।
1: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
2: जब पेशेंट आता है एकदम से, तो उसको लैप्रोस्कोपी, आईवीएफ या आईयूआई एडवाइस हम लोग नहीं कर सकते, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे, और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है, जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लैट्रोज देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टीविटामिन, विटामिन डी थ्री, ओमेगा थ्री, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, बिटवेल हो, ये सब देकर।
1: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ये स्वर था लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम था कलाबाज। जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम

लवर्स का दो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। युगल स्वर लता मंगेशकर और अमित कुमार के हैं, रचना आनंद बख्शी की और धुन राहुल देव बर्मन की।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं खय्याम साहब के संगीत निर्देशन में गुलजार साहब की रचना, आवाजें हैं अनवर और सुलक्षणा पंडित की, फिल्म का नाम है थोड़ी सी बेवफाई।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह और साथियों को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था दो जासूस। गीतकार हसरत जयपुरी थे और संगीतकार थे रविंद्र जैन। इस गाने के साथ ही आज का ये चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी शो। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, बारिश प्रकृति का एक अनमोल उपहार है जो चिलचिलाती गर्मी से हमें राहत दिलाता है और ताजगी और ठंडक प्रदान करता है। बारिश की पहली बूंद गिरते ही मिट्टी से एक बहुत ही मनमोहक और सौंधी खुशबू आने लगती है। आसमान में काले काले बादल छाते ही मन हर्षित हो जाता है ना? और ये बादल तो हमेशा ही मानव मन में कल्पना जगाते हैं, प्रेम और उमंग जताते रहे हैं। चाहे वो नीले आसमान में तैरते रुई जैसे गोले हों, या सावन के गहरे उमड़ते घुमड़ते बादल या काली घटाएं, ये सभी हमारे मन को बहुत लुभाती हैं। हमारे ही मन को क्यों, हमारे फिल्मकार, हमारे गीतकार इससे अछूते थोड़ी ही रहे हैं। वो भी इन काले बादलों पर अपना मन हार बैठते हैं और अपनी फिल्मों में या अपने गीतों में इन काले काले बादलों को स्थान देने लगते हैं। तो आज मैटिनी शो में उन्हीं कारे कारे बदरवा पर लिखे कुछ गीत हम लेकर आए हैं।

तो आज मैटिनी शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कारे बदरा पर आधारित कुछ फिल्मी गाने। और जब बात कारे बदरा की चले और फिल्म भाभी का गीत हम आपको नहीं सुनवाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो देखिए, ये फिल्म थी भाभी, 1957 की फिल्म है और लता मंगेशकर की आवाज थी, संगीतकार चित्रगुप्त थे, गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण। और एक भावुक और बहुत ही मधुर गीत लिखा गया और इस गाने में अभिनेत्री श्यामा ने बहुत ही शानदार अभिनय किया था।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर की आवाज में लिया है। 1953 की फिल्म है शिकस्त, संगीत शंकर जयकिशन का था। और सबसे बड़ी बात कि ये भी वर्षा के मौसम और प्रियतम की याद में जो गीत गाए गए, जो गीत लिखे गए, उन्हीं शुरुआती बेहतरीन गानों में से एक ये भी गीत है। फिल्म का नाम है शिकस्त और इसके गीतकार हैं शैलेंद्र।

इन बादलों ने हमेशा प्रकृति प्रेमी को लुभाया है। हमारे गीतकार, हमारे फिल्मकारों ने तो इनका वर्णन किया ही है, लेकिन जो हमारे महान साहित्यकार हुए हैं वो भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। अगर हम जयशंकर प्रसाद की बात करें, महान छायावादी कवि, उन्होंने भी बादलों के घूमड़ने और उनके सौंदर्य पर बहुत ही सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। घिर रहे घूमड़ कर आसमान में, भर रहे गर्जन गंभीर, शून्य में उड़ते विहग अब लौट चले अपने कुटीर। यानी ये काले बादलों के भव्य, शांत और गंभीर रूप का उन्होंने इन पंक्तियों में चित्रण किया है। तो ऐसी ही एक फिल्म है, 1969 की फिल्म धरती कहे पुकार के, और इस फिल्म का गीत है जारे जारे कारे बदरा। बहुत ही खूबसूरत गीत, हमें बेहद पसंद आता है, आप सभी को भी पसंद आता है। लता मंगेशकर की आवाज है और नंदा और जितेंद्र पर इस गीत को फिल्माया गया है, और ये गीत बादलों को संबोधित करके अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए बहुत ही मशहूर है। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

अहाना का गीत जारी बदरा बैरी जा एक बेहद खूबसूरत और भावुक विरह गीत है ये, जिसे राजेंद्र कृष्ण ने लिखा है और मदन मोहन ने संगीतबद्ध किया है और आवाज यानी मधुर आवाज लता मंगेशकर की। और इस गीत में नायिका बादलों से बात कर रही है और अपने प्रियतम के लिए, अपने सांवरिया के लिए अपनी तड़प बता रही है, अपने इंतजार को बता रही है। और नायिका बादलों को अपना दुश्मन कहती है और कहती है क्योंकि सावन का मौसम और बादलों की गड़गड़ाहट उसके अकेलेपन को, उसके विरह को और बढ़ा रही है। और ऐसे में वो बादलों को कोसने के साथ साथ उनसे विनती भी करती है कि वे उसके प्रियतम के पास जाएं और उनकी कोई खबर या संदेश लेकर आएं। तो वो कहती भी है कि पिया के दर्शन के बिना उसका मन तड़प रहा है, पी के दरस को जियरा तरसे, और उसका इंतजार यानी उसकी आंखें थक गई है, बाट तकत मोरी हारी नजरिया। बहुत ही खूबसूरत गीत उनके भावों के साथ नायिका के, जो कि बादलों के जरिए अपने प्रिय के पास अपना प्रेम संदेश और अपने रो रो कर बीते दिनों का हाल अपने साजन तक पहुंचाना चाहती है। तो आइए सुनते हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये बेहद ही खूबसूरत गीत।

ये था आज का मैटिनी शो। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए टर्मिनल भवन से यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया, जिससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ साथ विमानन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण से संबंधित हैं।
1: रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स प्रदेश के पश्चिमी जिलों में निवेश, रोजगार और विकास के नए द्वार खोलेगा। राजस्थान रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई, पैकेजिंग, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा, जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: प्रधानमंत्री मोदी शाम में गुजरात के लिए रवाना होंगे, जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने असम और अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान के आकलन के लिए अंतर मंत्रालय दल भेजने के निर्देश दिए। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केको फुखिमोरी को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्द खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। इसमें लाखों शोक संतप्त लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में आयातुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत का प्रतिनिधित्व बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरीटा ने कहा कि उन्होंने भारत सरकार और जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने हालिया संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने अमेरिका के कंसास सिटी स्टेडियम में राउंड ऑफ 32 के अंतिम मैच में घाना को 1-0 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की की। राउंड ऑफ 16 में अब कोलंबिया का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। इससे पहले मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के रोमांचक मुकाबले में काबू वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच चेस्टर स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम यादों की महफिल बस कुछ ही पलों में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन

लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम में आज हम याद करेंगे महान गीतकार पंडित भरत व्यास को। दो आंखें बारह हाथ, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत हम कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रही हैं। आवाज लता मंगेशकर की, पंडित भरत व्यास की बोल और वसंत देसाई का संगीत।

0: मीना कपूर की आवाज को अभी आपने फिल्म आंखें में सुना। पंडित भरत व्यास की रचना थी और मदन मोहन का संगीत। जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का,
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। ये स्वर है लता मंगेशकर का, फिल्म का नाम है अमर ज्योति। पंडित भरत व्यास की रचना को संगीत में ढाला है वसंत देसाई ने।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हम याद कर रहे हैं पंडित भरत व्यास को। आइए सुनते हैं उन्हीं का लिखा कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है जय चित्तौड़। आवाज लता मंगेशकर की और धुन बनाई है SN त्रिपाठी ने।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लेप्रोस्कोपी IVF या IUI एडवाइज हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्रोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोज देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, B12 हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: पंडित शिवराम की संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की रचना सुनिए। गायिका है सुमन कल्याणपुर और ये फिल्म है कण कण में भगवान।

उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की बोल सुनिए। आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की। फिल्म का नाम है हम हिंदुस्तानी।

फेर घूम घट न छेड़ झट जाने दो देर मुह भैर देर मेरे सत समाज तुहे आए ना लाज तुहे दगाबाज दगाबाज धक धक धक धक धक धड़के जिया थर थर थर थर थर कांप

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: मैं और हिमेश भाई कहीं टाउन जा रहे थे तो मेरे को हिमेश भाई बोले, सर कोई ऐसा वर्ड बताओ जो अभी तक नहीं आया हो। मैं, ऐसा कोई वर्ड नहीं है। फिर अचानक मुझे आया, हाँ सर एक वर्ड है, बर्दाश्त। तो सर ये बनाते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकता, दूसरी लाइन की अब दूर नहीं रह सकता। फिर उन्होंने तीसरी खुद कह दी, तेरे बिन, और हमारा गाना बन गया।
2: बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब दूर नहीं रह सकता, एक दिन तेरे बिन।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 4 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एसएन त्रिपाठी की संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास की रचना, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम जन्म जन्म के फेरे।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर, मीना कपूर, मन्ना डे और साथियों की आवाजें। फिल्म का नाम है अंगुलीमाल। रचनाकार पंडित भरत व्यास हैं और संगीतकार हैं अनिल बिस्वास।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम की अगली पेशकश, फिल्म का नाम है बेदर्द जमाना क्या जाने। गाने वाले कलाकार मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर, पंडित भरत व्यास के बोलों को संगीत में ढाला है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। आशा भोसले की आवाज, फिल्म का नाम भक्त प्रहलाद, गीतकार पंडित भरत व्यास और संगीत दिया है बी एन बाली ने।

कार्यक्रम का अगला गीत वसंत देसाई के संगीत निर्देशन में पंडित भरत व्यास का लिखा हुआ, स्वर है मन्ना डे, सुमन कल्याणपुर और साथियों की, और ये फिल्म है भरत मिलाप।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। आशा भोसले की आवाज में फिल्म गृह लक्ष्मी का गीत सुनिए। गीतकार पंडित भरत व्यास और संगीतकार हैं अविनाश व्यास।

0: सुमन कल्याणपुर की आवाज में हम आपको सुनवा रहे हैं बूंद जो बन गई मोती, इस फिल्म का गाना। पंडित भरत व्यास के बोलों को संगीत में ढाला है सतीश भाटिया ने।
1: कैसी उलझन, कैसी पहेली,

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं इकबाल कुरैशी के संगीत निर्देशन में ये पंडित भरत व्यास की अंतिम रचना। इस कार्यक्रम की आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की, और ये फिल्म का नाम है चा चा।

इस दो गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम में आज हमने पंडित भरत व्यास को याद किया था।

हम विविध भारती से बोल रही हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हम उपस्थित हो रही हैं बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं। हमारे ये कार्यक्रम सुनने के लिए बेताब हैं, है ना? बेकरार हैं, है ना? चलिए, तो आज का ये कार्यक्रम आप सभी के लिए, खास तौर से वो श्रोता जो थोड़ा सा गहराई में जाकर संगीत को पसंद करते हैं, जहाँ उन्हें लगता है कि गजल सुनी जाए, है ना? लगता है ना कभी कभी कि आज धूम धड़ाके से अलग हटकर कुछ गजलों का रसास्वादन किया जाए। जिंदगी में बहुत बार हम जब गमगीन होते हैं, दुखी होते हैं, या बहुत धैर्य और गंभीरता से जीवन बिता रहे होते हैं, तो हम गजलों को बहुत पसंद भी करते हैं। और हमारे कुछ श्रोता तो गजलों को ही पसंद करते हैं, लेकिन हाँ, हमारे कई श्रोता ऐसे भी हैं जो हर तरह का संगीत पसंद करते हैं। तो हम तो हमारे सभी श्रोताओं का ख्याल रखते हैं कि कुछ श्रोता जो आज गजलें सुनना चाहते हैं, तो चलिए उनके लिए कुछ गजलें लेकर हम आते हैं। तो ये जो गजलें हैं, फिल्मी गजलें हैं, जो विशेष रूप से बॉलीवुड के संगीत और फिल्मों के लिए लिखी जाती हैं। और दोस्तों, ये शास्त्रीय गजलों की छंद, तुकबंदी और भाव को बनाए रखती हैं, लेकिन इन्हें फिल्मों के कहानी और मूड के अनुसार थोड़ा सा आसान धुनों में ढाला जाता है। और फिल्मी गजलें उर्दू और हिंदी शायरी के बेहतरीन नमूनों, जैसे कि शेर, मतला, मक्ता, इन सभी को आम लोगों तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। तो गजलों का उपयोग फिल्मों में तब किया गया जब गहराई, उदासी, प्रेम की तड़प या अंतर मन की उथल पुथल को पर्दे पर दिखाया जाता है। तो आज ऐसी ही उथल पुथल बनी रहेगी सुरीला सफर के इस प्यारे से सफर में। तैयार है ना आप इस सफर में, जहाँ हल्की फुल्की उथल पुथल भी है, गहराई भी है, हो सकता है उदासी भी हो, लेकिन हाँ, जब हम आपसे कुछ सवाल करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा कि आप किस तरह की गजलें पसंद करते हैं, क्योंकि आज हमने उन गजलों को चुना है इस कार्यक्रम में जहाँ गजल की संरचना को कुछ नियमों का पालन भी करना होता है। जैसे कि गजल में कम से कम 5 शेर होते हैं और प्रत्येक शेर अपने आप में पूर्ण होता है। दूसरी ओर नज्म में एक ऐसा विषय होता है जो उसके शेरों में समाहित होता है, है ना? तो प्रत्येक शेर का जो अंत है रदीफ यानी शब्द या वाक्यांश से होता है, जिसके ठीक पहले काफिया यानी तुकांत शब्द आता है। तो काफिया और रदीफ ही शेरों को आपस में जोड़ते हैं। तो इन शर्तों को ध्यान में रखते हुए हमने आज की कुछ खास गजलें आपके लिए चुनी है इस कार्यक्रम में। तो हमारे जो श्रोता फेसबुक पेज से जुड़ गए हैं, www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर जिन्होंने अपने विचार लिख दिए हैं, वे तो समझ ही गए हैं कि आज का विषय गजलें हैं और आज हमने क्या टेक्स्ट आपके लिए लिखा है। लेकिन जो श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं, उन्हें हम बता दें कि आज का टेक्स्ट है, हमारी फिल्मों में गजलें केवल गानों का हिस्सा नहीं बल्कि कहानी को गहराई देने, किरदार के जज्बात बयां करने और माहौल बनाने का सशक्त माध्यम रही हैं। फिल्मों में गजलों का स्थान संगीत, शायरी और भावुकता का एक ऐसा संगम है जो दर्शकों के दिलों को सीधे छू लेता है। जब संवाद ना काफी होते हैं, तब गजलें अंतर मन की पीड़ा, तन्हाई और प्रेम को गहराई से पर्दे पर उतारती है। तो आज सुरीला सफर इन्हीं बेहतरीन पुरानी गजलों के साथ, बताइए आज कौन कौन सी चुनिंदा गजल आपके लिए पेश है। पेशी खिदमत है।

कार्यक्रम की ये पहली गजल। लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम अदालत, राजेंद्र कृष्ण की बोल, मदन मोहन की धुन।

लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म का नाम था अदालत। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज का विषय गजल जानकर मुझे गीतकार गोपाल दास नीरज की पंक्तियां याद आ रही हैं। लोग लिखते हैं अखबारों में छपने के लिए, हम लोगों के दिलों पर गजल लिखते हैं। बहुत खूब।

इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि सुनने वाले के दिल पर गीत से ज्यादा गजल का असर होता है। कभी कभी कोई बात पूरा गीत नहीं समझा सकती तो गजल का एक शेर समझा देता है। एक ही बात को कहने का हर शायर का तरीका अलग अलग होता है। जहां महबूब की तारीफ में गालिब कहते हैं कि वो आए हमारे घर पर, खुदा की कुदरत है, वहीं मीर तकी मीर कहते हैं हम हुए तुम हुए कि मीर हुए उसके जुल्फ के सब असीर हुए। क्या खूब, बहुत सुंदर। फिल्मों में साहिर, शकील, हसरत, कैफ आजमी ने अपने गजलों के माध्यम से खूब वाहवाही बटोरी है। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गजल शब्द अरबी भाषा के गजाल शब्द से बना है जिसका अर्थ हिरण होता है। काव्य के संदर्भ में जब हिरण शेर के डर से भागता है तो अंत में गिर जाने पर उसके मुंह से जो दर्द भरी चीख निकलती है उसे गजल कहा जाता है। आपके दिए गए पैराग्राफ के आधार पर गजल का निर्माण संगीत, शायरी और भावुकता के अनूठे संगम से होता है जो अंतर्मन की पीड़ा, तन्हाई, प्रेम, उदासी, तड़प और आध्यात्मिक प्रश्नों जैसे गहरे मानवीय जज्बातों को शब्दों में पिरोने से बनती है। बहुत खूब। एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी फिल्मी नगमों में शायरी और गजलों का एक बेहद खास और गहरा इतिहास रहा है। फिल्मों की कहानी को आगे बढ़ाने और किरदारों के जज्बातों को गहराई देने के लिए कई मशहूर गजलों को बेहतरीन गानों के रूप में पेश किया गया है। हिंदी फिल्मों की कुछ सबसे सदाबहार और मशहूर गजल फिल्म अर्थ है और जगजीत सिंह इस गजल से फिल्म जगत में एक अलग मुकाम बनाते हैं। गिटार और सारंगी के बेहतरीन इस्तेमाल ने इस गजल को सुकून भरा नगमा बना दिया है और इसी प्रकार इन्होंने बहुत सारी गजलों का जिक्र भी किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गजल क्या है, दो मिश्रों में जज्बात की जगमगाहट या बेसिर पैर की बातें। कुछ लोग मानते हैं कि इसमें रब नहीं होता मगर शायरों का मानना है कि इसमें जिंदगी होती है। मिर्जा गालिब के जमाने से पहले शुरू हुआ गजलों का दौर हमारे भारतीय फिल्मों में आज तक चल रहा है। फिल्मी गीतकार शकील बदायूनी, मजरूह, राजा मेहदी अली खान, साहिर लुधियानवी, आनंद बख्शी जैसे लोग लिखते हैं। हमारे फिल्मी संगीतकार ने बहुत ही मधुर धुनें बनाई इनके साथ, खासकर नौशाद साहब, मदन मोहन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, खयाम साहब, मुझे तो खासकर लता मंगेशकर जी और जगजीत सिंह की सभी गजलें जो उन्होंने फिल्मों में गाई बहुत ही पसंद आती है। जी हाँ, हमारे सवाल जिसका आप इंतजार कर रहे होंगे, हमारे सवाल हैं हमेशा की तरह दो। और उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि जो सवाल हम आपसे करेंगे जब आप उनका जवाब देंगे तो ध्यान रखिएगा कि जिस भी गजल को आप पसंद कर रहे हैं, वैसे तो आपको जो गीत पसंद है वो सर आंखों पर, हम उसका जिक्र जरूर करेंगे, लेकिन आज हमने कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम में वो गजलें चुनी हैं जिसमें पांच शेर हैं और प्रत्येक शेर अपने आप में पूर्ण है और प्रत्येक शेर का अंत रदीफ यानी वाक्यांश शब्द यानी वाक्यांश से होता है और जिसके ठीक पहले काफिया यानी तुकांत शब्द या वाक्यांश से होता है और काफिया और जो रदीफ ही वही मिलकर जो है इस गजल को बनाते हैं, है ना, शेरों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इस तरह की गजल आप हमें बताएं जो आप पसंद करते हैं। बहरहाल मैं आपको आज के सवाल बता देती हूं। हमारा पहला सवाल आपसे बिल्कुल सीधा साधा कि अधिकांश हिंदी कवि और फिल्मी गीतकार हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी बहुत निपुण थे, तो बताइए कौन से हैं वो हिंदी गीतकार जिन्होंने अपने फिल्मी गीत उर्दू में भी लिखे। हालांकि हमारे कुछ श्रोताओं ने उनका नाम लिख भी दिया है गीतकारों का, लेकिन फिर भी आपकी नजर में ऐसे कौन से गीतकार हैं जिन्होंने फिल्मी गीत लिखे हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी, बस उन गीतकारों का नाम लिखना है। और हाँ, हमारा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि बहुत सारी जो फिल्मी गजलें हैं उनकी कुछ खास पंक्तियां जिसने आपको, आपके दिल को झकझोर दिया हो, आपको पसंद हो, उसका जिक्र करें, यानी वो दो पंक्तियां हमें लिखकर भेज सकते हैं। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो मुझे ये पंक्तियां बेहद पसंद है जो अभी आपने फिल्म अदालत की सुनी थी कि मुरझा चुका है फिर भी ये दिल फूल ही तो है, अब आप ही की खुशी से कांटों में सो लिए, खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। ये पंक्ति मुझे बेहद पसंद है। आपको इस तरह की कौन सी पंक्तियां पसंद है उसका जिक्र आप कर सकते हैं। आइए सुनते हैं एस एन त्रिपाठी का संगीत, बहादुर शाह जफर की रचना, आवाज मोहम्मद रफी साहब की, फिल्म का नाम लाल किला।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आइए मित्रों चलते हैं विविध भारती के सुरीले सफर में। आज गजलों पर बात होगी, शायरों, गीतकारों और संगीतकारों ने कैसे गजल पर अपनी कलम चलाई, कैसे संगीत बजाया और किन कलाकारों ने अपनी आवाज से गजलों में रंग भरा, यही इस सफर में आज रहेगा। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि उर्दू भाषा को तहजीब और अदब का प्रतीक माना गया है। उर्दू संस्कारों के इस गुलशन में गजल को सबसे मुकम्मल स्थान हासिल है। दिल तक असर करने वाले मखमली शब्दों से सजी गीत की विधा देश की हिंदी सिनेमा जगत को सराबोर किए हुए है। एक से एक बेहतरीन उर्दू गजलें हिंदी फिल्मों में पेश की गई है। किस तरह की कैसी गजलों ने मुंबईया फिल्म जगत को अपना सुहावना एहसास दिया है, इन पर प्रकाश डालने से पहले गजल को थोड़ा समझ लेना चाहिए। गजल का मतलब प्रारंभिक शेर और दोहा में कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं होता। यदि कोई फर्क है तो यही कि मतला कई बहरों में लिखा जाता है और दोहा एक छंद में ही। मतला और दोहा दोनों ही दो मिसरों यानी पंक्तियों से बनते हैं और गंभीर से गंभीर विचार को संक्षिप्त भाव में कहने का भाव रखते हैं। बहुत सुंदर, आपने बहुत तरीके से गजल को समझाया है कि क्या है गजल। एक श्रोता लिखते हैं कि आज गजलों की बारी आई है। गजल के हर शब्द में बहुत ही गहराई होती है, भावों से परिपूर्ण होते हैं। मैं तो इस सफर में गजल फिल्म नायक सुनील दत्त जी और मीना कुमारी जी की गजल सुन रंग और नूर की सौगात कैसे पेश करूं मन में उतर जाती है और हर शब्द मोहम्मद रफी साहब की नूरानी आवाज भी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गजल भावनाओं की सबसे कोमल और गहरी अभिव्यक्ति है। इसमें प्रेम की मधुरता है, मोहब्बत की गहराई है, विधा की कसक है, दर्द की सच्चाई है।

दिशा प्रदान करती हुई इबारत है आज की गजल। मन को स्पर्श कर दिलों को झंकृत करती है, कहीं प्रेममय दिलों के तारों को छेड़ती है तो कहीं टूटे दिलों के जख्मों पर मरहम का काम करती है। गति धीमी मगर असर गहरी करने में गजल दिलों को वो मंजिल प्रदान करती है जिसकी तलाश में तन्हा दिल हसरतें रखता है। गजलों में सुरीला सफर गुजारने का बेसब्री से इंतजार रहता है। बहुत सुंदर, हमारे श्रोताओं ने बहुत ही गहराई से अपनी इबारत हम तक पहुँचाई है। तो हमारे सवाल आपको याद है ना, हमने आपसे पूछा था कि अधिकांश हिंदी कवि और फिल्मी गीतकार हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी उतने ही निपुण थे। तो बताइए कौन से है वो हिंदी गीतकार जिन्होंने अपने फिल्मी गीत हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी लिखे। और वहीं हमारा दूसरा सवाल आपसे था कि फिल्मी गजलों में कुछ खास पंक्तियां जो आपके दिल को छू गई हैं उसका जिक्र कर सकते हैं आप। और अब पेश खिदमत है कार्यक्रम की अगली गजल। फिल्म का नाम है ममता, गायिका लता मंगेशकर। इसे मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है और धुन रोशन की है।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म ममता की ये गजल सुनी। हमारे एक श्रोता का लिखना है कि आज की इबारत केवल एक लेख नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के संगीत इतिहास की एक सच्ची समझ है। ये लेख सिनेमा और शायरी के गहरे रिश्ते को बेहद खूबसूरती से बयां करता है। लेखक ने इस बात को बहुत संजीदगी से रेखांकित किया है कि गजलें फिल्मों में सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि किरदारों की खामोश जुबां होती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर गजलों के साथ है। ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। मैं तो सिर्फ दर्द दिल की बात सुनाता हूँ। हिंदी फिल्मों में बहुत से गीत ऐसे हैं जिनका मूल रूप उर्दू रूप थोड़ा सा अलग होता है। मिर्जा गालिब जाने माने गजलकार हैं, साहिर लुधियानवी, हसरत जयपुरी, कमर जलालाबादी, ऐसे बहुत से शायरों ने अपनी गजलें फिल्मों के लिए दी हैं। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दियार में, ये मेरी सबसे प्यारी गजल है। आज के सुरीला सफर में इस गजल को शामिल करने की मैं मंदाकिनी से प्रार्थना करता हूँ, नहीं तो मेरा दिल इस प्रोग्राम में नहीं लगेगा। अरे, हमने तो इस फिल्म की दूसरी गजल आपको सुनवाई और हम उम्मीद करते हैं वो गजल आपको पसंद आई होगी। न किसी की आंख का नूर हूँ, है ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि गजल दिल के भावों को, दुख और प्रेम को बयां करती है। एक श्रोता का लिखना है कि आज सुरीला सफर में गजलों की बारिश होगी। फिल्मी और गैर फिल्मी गजल तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। फिल्मों में गजल के माध्यम से अंतर्मन के सभी उद्गारों को व्यक्त करता है। शांत वातावरण में गजल को सुनने का एक अलग ही मजा है। बाकी आपने बहुत सारी गजलों का जिक्र किया है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मों में गजलों का स्थान संगीत, शायरी और भावुकता का एक ऐसा संगम है जो दर्शकों के दिलों को सीधे छू लेता है। और आज के कार्यक्रम के लिए मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ। वही एक श्रोता ने लिखा है कि गजल सुनना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, खासकर के रात के सन्नाटे में और भी सुकून मिलता है। गजल का नाम लेते ही पहला नाम जगजीत सिंह जी का आता है। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि अरबी भाषा से उत्पन्न एक लोकप्रिय काव्य और संगीत शैली गायन शैली यानी गजल, जो स्वतंत्र दोहों की लयबद्ध तुकबंदी होती है, दोहराए जाने वाले भाव, बिने शब्दों की अदृश्य श्रृंखला यानी गजल, जिसे जादुई आवाज, शब्द उच्चारण और बेमिसाल स्वाभाविक अदायगी से अनुभव किया जा सकता है। एक श्रोता ने लिखा है कि अनगिनत अभिजात गजलें दिखाई देती हैं जिसका जिक्र करें समझ में नहीं आता। एक बात सच है कि आज हमें लता जी, आशा जी, रफी जी के साथ तलत महमूद, पंकज उदास, हरिहरन, गुलाम अली जैसे बहुत सारे कलाकारों की शायद आवाजें सुनाई देने वाली हैं। और आपने बहुत सारी गजलों का जिक्र भी किया है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज गजलों की विदा पर प्रोग्राम लेकर आ रही है बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति के साथ। जो गजल भूली बिसरी यादों में है, सुनने को मिलेगी, अंदाजा लगाना मुश्किल है, फिर भी अपनी पसंद की गजल हम तो हैं। पर देश में निकला होगा चांद, अच्छा ये गजल आपको बेहद पसंद है, जो अंतर्मन की पीड़ा को दर्शाती है, ये दौलत भी ले लो वाली। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्मों में गजलों का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के कार्यक्रम में कुछ बेहतरीन गजलें सुनने को मिलने वाली हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया और मेहरबानी, आप इतनी गहराई के साथ अपनी इबारत पेश कर रहे हैं। और आइए अब सुनते हैं शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र की रचना है, तलत महमूद की आवाज है, फिल्म का नाम पतिता यानी पतिता फिल्म की ये गजल।

तलत महमूद की आवाज थी और फिल्म का नाम था पतिता। और दोस्तों, ये शुद्ध हिंदुस्तानी गजल जिसमें उर्दू का कोई अंश नहीं था, आपने अगर इसको ध्यान से सुना होगा तो महसूस भी किया होगा। और शैलेंद्र सबसे जटिल अवधारणाओं को जो कि सरलतम भाषा में व्यक्त करने में माहिर थे, उन्होंने मतलब जटिल से जटिल बात को वो कितने सरल शब्दों में कहते थे, इस गजल में हमें नजर आता है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी ये जो कविता है वो बहुत ही उत्कृष्ट है, क्योंकि वो लिखते हैं हमारे सबसे मधुर गीत में है वो जो सबसे दुखद विचारों को व्यक्त करते हैं, जैसे कि है सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुरों में गाते हैं। तो ये गीत एक ऐसी ऐसे साथी को सांत्वना और दिलासा देता है जिसने बहुत दुख झेला है और जिसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उसे प्यार का दूसरा मौका मिला है, है ना। तो देखिए ना कितना सुंदर तरीके से शैलेंद्र ने इस गजल को रचा।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गजल। और हाँ, हम आपके जो उत्तर है उसका इंतजार कर रहे हैं। आज आपने उत्तर देने शुरू भी कर दिए हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि गजल वो पसंद करें जो हमारे नियमों का पालन कर रही है, हमारे यानी गजलों के नियमों का पालन कर रही है। कोशिश कीजिए जानने की, समझने की उस गहराई को कि आखिर कोई गीत गजल कब कहलाया जाता है। आइए सुनते हैं नक्श लायलपुरी की रचना, मदन मोहन का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म का नाम दिल की राहें।

हमारे श्रोताओं ने सवालों का जवाब देना शुरू कर दिया है। आप लिखते हैं कि फिल्मी गजलों के अलावा भी गैर फिल्मी गजल भी काफी लोकप्रिय है, खासकर गुलाम अली, मेहदी हसन साहब, जगजीत सिंह, पंकज उदास और तलहत अजीज की गाई जो गजलें हैं हमें बेहद पसंद है। एक श्रोता लिखते हैं कि गजलों के बादशाह मदन मोहन पहले नंबर पर ही आए, लता मंगेशकर, मदन मोहन, राजेंद्र कृष्ण, यूं हसरतों के दाग, ये गजल बहुत ही पसंद थी। एक श्रोता ने लिखा है कि फिर छेड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की, पंक्ति हमें बेहद पसंद आती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वह क्या शुरुआत है, आनंद को बयां करना मुश्किल है आज, मदन मोहन फिल्मी गजल में उनका कोई सानी नहीं है। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे तलत साहब का गाया हुआ ये गम है दिल क्या करूं और ये क्या जगह है दोस्तों, गजल बहुत पसंद है। वहीं हमारा एक सवाल था कि जो अधिकांश हिंदी गीतकार हैं वो कौन कौन है जिन्होंने उर्दू में भी लिखा है। हमारे श्रोता जवाब दे रहे हैं कि साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी, गुलजार साहब, जावेद अख्तर, बहुत खूब। और एक श्रोता लिखते हैं कि उर्दू और हिंदी में दोनों में बहुत अच्छे गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मोहम्मद रफी, जगजीत सिंह, तलत महमूद, लताजी, तलत अजीज की आवाज बहुत ही खूबसूरत लगती है। एक श्रोता ने लिखा है कि गुलजार और जावेद अख्तर साहब इस श्रेणी में आते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि कैफी आजमी, मजरू सुल्तानपुरी हिंदी के साथ उर्दू में भी लिखा करते थे। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला गुलाम अली साहब की, ये पंक्ति मुझे बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि बड़ी बारीकियां सजोई है आज के कार्यक्रम में, गजलों के रदीफ काफिया मिसरा गजब है आज का कार्यक्रम। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आनंद बख्शी, मजरू सुल्तानपुरी, गोपाल दास नीरज, राजेंद्र कृष्ण, कैफी आजमी, राजा मेहदी अली खान, ये सभी हैं जिन्होंने हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि 1837 से 1857 तक शासन करने वाले भारत के आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय, इनके जो गजल है वो इन्हें बहुत पसंद है। वहीं राजेंद्र कृष्ण और साहिर लुधियानवी को लोग हिंदी और उर्दू में ज्यादा पसंद करते हैं। और न किसी की आंख का नूर हूँ इस गजल को बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है और वो कह रहे हैं कि ये गजल हमारे दिल के बहुत करीब है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी, कैफी आजमी, निदा फाजली।

उम्मीद अख्तर और गुलजार साहब इस श्रेणी के गीतकार हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि दिल चीज क्या है, आप मेरी जान लीजिए, ये जो बोल हैं वो मुझे बेहद पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि एक गैर फिल्मी गजल है, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ये गजल हमें बेहद पसंद आती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज की मेरी लिस्ट में ये गजल न किसी की आंख का नूर हूं, ये बहुत ही प्यारी गजल है जो इन्हें बेहद पसंद है। आई सुनते हैं आरजू फिल्म की ये गजल, आवाज तलत महमूद साहब की, मजरू सुल्तानपुरी की रचना, अनिल बिस्वास का संगीत।

तलत महमूद को अभी आपने सुना फिल्म आरजू में। हम आपको बता दें ये 1950 की फिल्म थी। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, ये पंक्ति मुझे बेहद पसंद आती है। साथ ही तुमको देखा तो ये ख्याल आया और दिखाई दिए यूं कि खुद बेखुद किया, ये पंक्ति इन्हें बेहद पसंद आती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि दिल आज शायर है गम एक नगमा, ये पंक्तियां हमें बेहद अच्छी लगती हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बेकरारी का आलम न पूछे महोदया, कार्यक्रम सुनने के लिए हमने क्या क्या किया। अरे वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज गजलों की बारी आई ही गई, गजल के हर शब्द में बहुत गहराई होती है और आपने एक गजल का जिक्र किया है उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताना चाहूंगी। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ना जी भर के देखा ना कुछ बात की बड़ी आरजू थी मुलाकात की, चंदन दास की ये जो गजल गार फिल्म में गजल है ये इन्हें बेहद पसंद आती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पंडित भरत व्यास के सुमधुर नायाब कर्णप्रिय गीतों से सजी आज की यादों की महफिल थी, ये कार्यक्रम भी हमें बेहद पसंद आया। एक श्रोता ने लिखा है कि गजल पहले विशिष्ट लोगों

महफिल में ही गाई जाती थी और आम जनता के बीच इतनी लोकप्रिय नहीं थी, पर इसे सामान्य जनता के बीच लोकप्रिय करने का काम जगजीत सिंह और पंकज उधास ने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे ऐसे एल्बम हैं मंदाकिनी जी, जहां फिल्मों की एल्बम में हम बात करें तो हमने लाइव ऑडिटोरियम में हमने सुना है, मतलब लाइव प्रोग्राम सुना है किसी ऑडिटोरियम में, और गजल के दीवानों के दिलों को सीधे छू लेता है। इसे सुनने का आनंद तब आता है जब हम एकांत में आंखें बंद करके सुनते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे गजलें अंतर्मन की पीड़ा, तन्हाई और प्रेम को गहराई में उतार रही है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि तलत महमूद की गाई सबसे प्रसिद्ध और सदाबहार गजल फिर वही शाम वही गम, जो वो अपनी मखमली और थरथराती आवाज में गाते हैं, वो इन्हें बेहद पसंद आती है। इस तरह से हमारे श्रोता अपने अपने पसंद का जिक्र कर रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जहां आ रहा फिल्म की तेरी आंख के आंसू पी जाए, ऐ मेरी तकदीर, ऐसी मेरी तकदीर कहां, ये हमें बेहद पसंद आती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फिल्म गजल की ये गजल मैं आपको सुनवा रही हूं। बोल है नगमा और शेर की बारात किसे पेश करूं। और एक बात यहाँ हम कहना चाहते हैं कि अक्सर हम इस फिल्म का जो गीत है रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, इसे हम गजल समझते हैं और हमारे कई श्रोताओं ने इसकी फरमाइश भी की है कि ये हम सुनना चाहते हैं। असल में दोस्तों ये गजल नहीं है। अगर मतलब आपने कभी इसके बोलों पर ध्यान दिया हो तो आपको पता भी चलेगा कि ये दो पंक्तियों के छंदों में नहीं है, बल्कि इसका जो दूसरा गीत है नगमा और शेर की सौगात, जो मैं अब आपको सुनवाने वाली हूँ, हम आपको सुनवा रहे हैं, ये गजल की शर्तों में आती है। ये गजल उस नियम, वो दायरा जो है गजल का, उसके अंतर्गत आती है। तो आइए सुनते हैं साहिर लुधियानवी की लिखी ये गजल, फिल्म का नाम गजल, आवाज लता मंगेशकर की, मदन मोहन की धुन।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था गजल। और अब कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक हम पहुंच चुके हैं। आप सभी के विचार, आप सभी की पसंद हमें जानने को मिली, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और अब अंत में हम ये बताना चाहेंगे, खासतौर से मैं, कि अगर मुझसे पूछा जाए कि किस शायर की कौन सी पंक्ति आपको पसंद है, तो मैं कहूंगी बहादुर शाह जफर की ये पंक्तियाँ मुझे आज भी अंदर तक भिगो देती हैं। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, दो गज जमी भी न मिली कुएं यार में। इस पंक्ति को जब मैं पढ़ती हूँ, जानती हूँ, महसूस करती हूँ, तो आँखों से अश्रु अपने आप बह निकलते हैं। आपने भी अपने विचार रखे, अपने पसंद की पंक्तियां, अपने पसंद के गीतकारों का जिक्र किया, गजल क्या है आपने उसको महसूसा। आज के इस कार्यक्रम को, इस सफर को महसूस करने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी चाहती हैं इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।

प्रस्तुत है कार्यक्रम त्रिवेणी। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। बद्रा, ये शब्द सुनते ही मन में सावन की भीगी भीगी तस्वीर उभर आती है। आकाश में तैरते ये मेघ केवल जल की बूंदे नहीं लाते, बल्कि अपने साथ अनेक भावनाएं भी लेकर आते हैं। तपती धरती को शीतलता देना हो, सूखे खेतों को हरियाली से भरना हो, या फिर प्रकृति को नया जीवन देना हो, बद्रा हर बार अपनी अनोखी भूमिका निभाते हैं। दूर क्षितिज पर उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं किसी उत्सव की तैयारी कर रही हो। उनकी छाया में पेड़ पौधे झूम उठते हैं और हवाओं में एक अलग ही ताजगी घुल जाती है।

भारतीय साहित्य, संगीत और लोकगीतों में भी बद्रा का विशेष स्थान रहा है। कभी इन्हें प्रेम का संदेश वाहक माना गया तो कभी विरह की वेदना का साथी। गांव की पगडंडियों से लेकर शहरों की सड़कों तक बद्रा का आगमन हर किसी के मन में एक नई उम्मीद जगा देता है। बच्चों के लिए ये कागज की नावों का मौसम होता है, किसानों के लिए समृद्धि का संकेत और कवियों के लिए प्रेरणा का स्रोत। यही कारण है कि बरसात और बादलों का जिक्र आते ही मन अनायास ही गीतों और कविताओं की दुनिया में खो जाता है।

बद्रा हमें ये भी सिखाते हैं कि जीवन में परिवर्तन कितना आवश्यक है। जैसे सूने आकाश को बादल सजाते हैं, वैसे ही आशाएं और सपने जीवन को अर्थ देते हैं। वे आते हैं, बरसते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन अपने पीछे ताजगी, हरियाली और यादों की एक लंबी श्रृंखला छोड़ जाते हैं। शायद यही वजह है कि हर वर्ष सावन के साथ लौटने वाले बद्रा केवल मौसम का हिस्सा नहीं लगते, बल्कि किसी पुराने मित्र की तरह प्रतीत होते हैं, जिनकी प्रतीक्षा पूरे वर्ष बनी रहती है।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नए टर्मिनल भवन से यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार सृजन को बढ़ावा भी मिलेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सहकार से प्रेरित सहकारिता किसानों, महिलाओं और लघु उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए एक शक्तिशाली भूमिका निभाती है। वहीं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता भारत की संस्कृति, सामूहिक शक्ति और आत्मनिर्भरता की नींव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र ने नई गति प्राप्त की है और इसका उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन और सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता आंदोलन आज देश के विकास की प्रमुख धारा बना हुआ है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार प्रदेश के दो दिन के दौरे पर हैं। श्री कुमार आज इंदौर में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कल ओंकारेश्वर और महेश्वर के धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों का भी भ्रमण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की संस्कृति, आध्यात्मिकता और राष्ट्रीय चेतना को वैश्विक मान्यता दिलाने में स्वामी विवेकानंद का योगदान अतुलनीय है। श्री मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की बुद्धि और प्रेरणादायक विचार लाखों युवाओं का मार्गदर्शन करते रहेंगे और उनकी आध्यात्मिक शिक्षाएं विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में देश को नई दिशा प्रदान करती रहेगी। केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की है। इसका खरीद मूल्य 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर अब 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि संशोधित खरीद मूल्य आज से प्रभावी हो गया है। मंत्रालय के अनुसार इससे प्याज किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा और साथ ही बफर खरीद प्रयासों में भी सहायता मिलेगी। प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हो गया है। नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। हरदा में नर्मदापुरम खंडवा स्टेट हाईवे बंद हो गया है, जबकि खंडवा सीहोर और उज्जैन समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 19 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बड़वानी और खंडवा जिले सबसे अधिक प्रभावित रह सकते हैं, जहां रेड अलर्ट घोषित किया गया। मौसम विभाग ने रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, खरगोन, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा और बालाघाट जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं इंदौर, देवास, सीहोर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर और पारुना जिलों में भारी वर्षा होने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में खेत बचाओ अभियान के तहत किसानों को आधुनिक व वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई। झाबुआ में स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कलेक्टर कार्यालय परिसर में विशेष स्वच्छता अभियान और श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। सतना में जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान और जनप्रतिनिधि से सीधे संवाद को सशक्त बनाने में आज सांसद गणेश सिंह ने सांसद सुविधा केंद्र के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर समाचार आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी।

0: राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूं। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
0: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
1: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे सांड में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
3: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
4: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी

0: पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जाँच एजेंसी NIA इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मोसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
2: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है। तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को रब रब बनाए। मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भी बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है, उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है। अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज

0: AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 बजे भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
1: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार 5वें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना के लिए लियोनल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है आपके मनपसंद गीतों से सजा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम में हमें पत्र लिखा है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। साथ ही ग्राम संदलपुर ग्वालियर से कालीचरण यादव, दीपक कुमार यादव, चांदनी यादव और उर्मिला यादव ने। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म सिलसिला का गीत, जिसे आवाजें दी है लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन ने। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और इसे संगीतबद्ध किया है शिव हरि ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म सिलसिला का ये गीत।

और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

संतोष आनंद का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ गीत, जिसे आवाजें दी है लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों ने। फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान। इसे सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजी है कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का ये गीत।

इस समय आप आनंद ले रहे हैं अपने मनपसंद गीतों का और कार्यक्रम चल रहा है आपकी फरमाइश। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल, राजाजी कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से एमएम राजावत, मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन उमेश, सरोज आरती, रेखा, ऋतिका, रिचा, स्वीटी सागर, रिया, रीत और ऋषभ राजावत। आप सभी ने सुना चाहा है फिल्म लिबास का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत गुलजार का है और संगीत है आरडी बर्मन का।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश का आखिरी गीत फिल्म इजाजत से। आवाज आशा भोसले की है, गीत गुलजार का, संगीत आरडी बर्मन का और पसंद आप सभी श्रोताओं की। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झागवेंद्र कुमार वर्मा की। साथ ही इसी गीत को सुनना चाह है ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ज्योति और रियांश ठाकुर ने।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें। आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन और सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता आंदोलन आज देश के विकास की मुख्य धारा बना हुआ है।

आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन और सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता आंदोलन आज देश के विकास की मुख्य धारा बना हुआ है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार प्रदेश के दो दिन के दौरे पर हैं। श्री कुमार आज इंदौर में आयोजित सम्मेलन में 1500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने स्वामी विवेकानंद जी को एक महान देशभक्त और दार्शनिक बताया। केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की है। इसका खरीद मूल्य 1875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर अब 2125 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। भारत भवन में आज से गायन पर्व की शुरुआत हो रही है। शाम 7 बजे से शुरू होने वाले इस पर्व में आस्था गोस्वामी और रुचिका केदार की जुगलबंदी रहेगी। प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हो गया है। नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। हरदा में नर्मदापुरम खंडवा स्टेट हाईवे बंद हो गया है, जबकि खंडवा सीहोर और उज्जैन समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मैच आज मैनचेस्टर में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा समाप्त करने से पहले श्रोताओं, हम आपको बता दें, हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी शाम 5:02 पर। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रीवा केंद्र की प्रस्तुति है। आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति कार्यक्रम ग्राम सभा आप सुनेंगे शाम 7:21 पर। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे शाम 7:45 पर। रात 8 सुनिएगा सुर्खियों में पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ, इसकी 8वीं कड़ी आप सुनेंगे रात 8:15 पर। साहित्य भारती ये आप सुनेंगे रात 9:30 पर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10:00। आज इसके अंतर्गत सुनिएगा पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय का ख्याल गायन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। ये थी जानकारी हमारी सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 188.32 अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव ओटीटी ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 3:02:22 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5:00 अपने विविध कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक प्रसारण डीटीएच पर जारी रहेगा। ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति कार्यक्रम लोक संगीत।

पद्मधर झा के स्वर में अभी आपने सुना लोक भजन। लीजिए अब सुनिए दादरा, स्वर पद्मधर झा का है।

आशा भोसले की आवाज में लीजिए अब सुनिए फिल्म डॉन का गीत। गीत लिखा है इंदीवर ने और संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने।

इंदीवर का लिखा बिद्दू का संगीत से सजाया हुआ गीत सुनिए नाजिया हसन की आवाज में। फिल्म का नाम है कुर्बानी।

किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में ये है फिल्म हम किसी से कम नहीं का गीत। गीत मजरू का है, संगीत है आरडी बर्मन का।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी भोपाल है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे सड़क, नवीनीकरण ऊर्जा एवं विद्युत पारिषण सहित कई क्षेत्रों में हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सहकारिता आंदोलन आज देश के विकास की मुख्य धारा बना हुआ है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। श्री कुमार आज इंदौर में आयोजित सम्मेलन में 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद

0: आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बहुत बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने प्याज का खरीद मूल्य 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मैच आज मैनचेस्टर में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है, शाम के 4 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान लोक। आज इसके अंतर्गत सुनिए भेंट वार्ता, विषय है रोबोटिक्स और मानव जीवन। विशेषज्ञ हैं कौशिकी उपाध्याय।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं पंकज नागर आपका स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम विज्ञान लोक में, जहां हम एक बेहद रोचक और प्रासंगिक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, रोबोटिक्स और मानव जीवन। तकनीक ने हमारे जीवन को जिस तेजी से बदला है, उसमें रोबोटिक्स एक क्रांतिकारी भूमिका निभा रही है। आज रोबोट केवल विज्ञान कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे घरों, अस्पतालों, फैक्ट्रियों, यहाँ तक कि अंतरिक्ष तक में अपने कदम जमा चुके हैं। सवाल यह है, क्या ये रोबोट हमारे सहयोगी हैं या प्रतिस्पर्धी? क्या वे मानव जीवन को आसान बनाएंगे या उसे छीन लेंगे? इन्हीं तमाम पहलुओं पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस यानी क्रिस्प भोपाल से सॉफ्टवेयर ट्रेनर कौशिकी उपाध्याय जी। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: मैम, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, आखिर रोबोटिक्स क्या है?
1: रोबोटिक्स को समझने के लिए पहले हमें रोबोट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो रोबोट्स जो वर्ड है वो 1921 में एक साइंस फिक्शन थी, जिसमें ह्यूमंस, हमारे जैसे दिखने वाले कुछ उन्होंने मशीन्स दिखाए जो हमारे जैसे चलते थे, उठते बैठते थे, और यहाँ तक कि हमारे जैसे सोचने की क्षमता भी रखते थे। उन वहाँ से हमारा शब्द निकला जो है रोबोटा। रोबोटा से निकला है रोबोट्स। और रोबोटिक्स जो है वो ये फील्ड है जिसमें हम देखते हैं कि ये जो रोबोट्स हैं इन्हें हम कैसे डिजाइन करें, क्या किस एरिया के लिए हम इन्हें डिजाइन कर रहे हैं, और इनके मैन्युफैक्चरिंग यानी कि कितने क्वांटिटी में ये बनना चाहिए, वो सब कुछ हम डिसाइड करते हैं इस फील्ड में। तो अगर इस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है तो ये सारे एरियाज विच इज कंसेप्शन, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये तीनों एरियाज आते हैं रोबोटिक्स में।
0: क्या रोबोट्स इंसान की जगह ले लेंगे?
1: जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तब ये क्वेश्चन हर बार आता है कि क्या ये टेक्नोलॉजी ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगी। तो पहली चीज तो ये है, टेक्नोलॉजी बनाई ही ह्यूमंस ने है, तो हमारे पास कंट्रोल रहता है। रोबोट्स जो हैं वो हमारा काम आसान करने के लिए हैं। जो एरियाज में ह्यूमंस जाना मुश्किल होता है या जहाँ पे हमें रिपीटेटिव टास्क करना होता है, बार बार एक ही चीज करने में ह्यूमंस अच्छे नहीं होते, वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। उनको आप नया डिज़ाइन करने बोलिए, क्रिएट करने बोलिए, वो ज़्यादा अच्छा करेंगे, बट एक ही टास्क आप बार बार करेंगे तो वो गलतियाँ करते हैं। उसी चीज़ के लिए रोबोट्स बनाए गए हैं। तो वो इंसान की जगह लेने के लिए नहीं है, उनकी मदद करने के लिए है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो इस फील्ड में आप अपने आप को स्किल करिए, जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है उससे डरने की बजाय आप अगर उसमें स्किल करेंगे तो एक्चुअली जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, कम नहीं होती कोई भी नई टेक्नोलॉजी आने से।
0: जी, आज के समय में रोबोट्स कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं?

0: ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है. हर क्षेत्र में आज रोबोट यूज हो रहे हैं, और मैं स्पेसिफिकली बोलना चाहूंगी कि इंडिया रोबोट्स के विषय में बहुत अच्छा कर रहा है. हेल्थ केयर को आप ले लीजिए, आप हेल्थ केयर सेक्टर में देखें तो आज रोबोट्स हैं जो सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं. ऐसे रोबोट्स हैं या ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम 3D व्यू ऑफ ऑर्गन्स देख सकते हैं. सबसे बड़ा चैलेंज हमारी जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में था वो यही था कि सर्जन्स को सब कुछ जो दिखता था वो वीडियो के थ्रू दिखता था, है ना, जो एक 2D इमेज देता था. बट हमारे पास अब ऐसे रोबोट्स हैं जो बहुत प्रिसिशन इंजीनियरिंग के थ्रू बहुत ही मिनिमल इन्वेजिव प्रोसीजर्स कर सकते हैं. बहुत कम सर्जिकल मार्क्स आएंगे, बहुत कम आपको लेयर्स को पेनिट्रेट करना पड़ेगा, और बिना उसके भी बहुत सक्षम सर्जरीज हो सकती हैं. जो बहुत घंटे लेती थी वो बहुत कम घंटे लेती हैं, और 3D व्यू हमारे डॉक्टर्स को मिलता है देखने. ऐसे ही आप दूसरी जगह सोचें तो रेस्क्यू ऑपरेशंस, जहां अर्थक्वेक आया है, लोग फंसे हुए हैं, वहां से निकालने के लिए आज रोबोट्स हैं. एटलस करके एक बहुत फेमस रोबोट है जो बहुत ही एजाइल और बिल्कुल ह्यूमन फंक्शंस जैसा काम करता है. वो दौड़ने में, मुश्किल जगहों में जाने में और लोगों को निकालने में सक्षम है. यहाँ तक कि हमारे घर में भी अब रोबोट्स आ चुके हैं. जैसे कि एक मॉली रोबोट है जो खाना बनाने में एक्सपर्ट है, तो किचन्स में भी हमारे अब रोबोट आ चुके हैं. तो सब जगह है, हर जगह आप जो फील्ड सोच सकते हैं उन सारी फील्ड्स में आज रोबोट्स प्रेजेंट हैं.
1: वर्तमान में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना देख रहे हैं, यानी एआई का. तो रोबोटिक्स और एआई का क्या संबंध है?
0: रोबोटिक्स और एआई बहुत ही मिले जुले सब्जेक्ट्स हैं. रोबोट जो है वो बॉडी जैसा काम करता है, और एआई जो है वो दिमाग जैसा काम करता है. तो रोबोट्स को हम जितना ज़्यादा अच्छा या स्टर्डी बनाएंगे उतनी उनकी लाइफ होती है, उनकी फंक्शनैलिटी होती है. मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल से ये बात समझाना चाहती हूँ. आपके यहाँ वैक्यूम क्लीनर होगा, आजकल वैक्यूम क्लीनर के रोबोट्स आ गए हैं जो वैक्यूम क्लीनिंग करते हैं. वो खुद से घर में कहीं पे भी जाके सामान साफ करते हैं. अगर गीला है तो गीली चीज को पोंछते हैं, सूखा कचरा है तो सूखा उठाते हैं. ये सब चीजें एक नॉर्मल मशीन भी कर सकती है, बट सबका घर अलग होता है, घर में चीजें इधर उधर भी हो सकती हैं. वो कैसे रोबोट डिसाइड करे कि मेरे को कहाँ से जाना है, चीजों को कैसे ना वो खराब करे, वो कैसे इन्वायरमेंट को समझे, ये जो क्षमता उसे देता है वो एआई देता है. सो एआई दिमाग जैसा है मशीन के लिए, और मशीन जो इस दिमाग का यूज करके बहुत तकनीकी एकदम बारीक चीजें कर सकती है वो रोबोट है. तो रोबोट और एआई एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेना चाहती हूँ. आजकल रोबोट्स की एक रास्बेरी जो एक बहुत ही फ्रेजाइल फ्रूट है वो उठाने की तक मशीन आ गई है. आप सोचिए, वो ऐसा काम है जो ह्यूमंस के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि वो फ्रूट जो है वो दब जाता है, या उस वो अलग अलग जगह लगा होता है पेड़ पे. आप सोचिए रोबोट के लिए कितना मुश्किल है समझना कि वो कहाँ लगा है और उसे कितने क्षमता से उठाना है. बट एआई की मदद से आज वो ये कर सकते हैं.
1: हमारे देश भारत में रोबोटिक्स का क्या भविष्य देखते हैं आप?
0: रोबोटिक्स, जैसे मैंने बोला, भारत में बहुत उन्नति है इस एरिया में. स्पेशली हमारे यहाँ जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मैनुअल स्कैवेंजिंग की, यानी कि सीवर्स को साफ करने की, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो इंडिया में था, जिसके लिए बहुत सारे लेबर्स ये काम करते थे, और थाउजेंड्स में लेबर्स मरते थे ये काम करते समय बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक गैसेस जो प्रोड्यूस होती थी वहां से, सीवर्स में से. तो ये मैनुअल स्कैवेंजिंग दूर करने के लिए हमारे पास रोबोट्स हैं. आज हमारे यहाँ जेन रोबोटिक्स करके एक कंपनी है जिन्होंने बैंडिकूट्स नाम का एक रोबोट बनाया है जो ये काम आज करता है. आज मैनुअल स्कैवेंजिंग की जरूरत नहीं है, और बैन भी करी गई है, और इस एरिया में तक हम जा चुके हैं. भारत बहुत नाम कमा चुका है इन मैनुअल स्कैवेंजिंग, या आप ऑक्टोबॉट्स कहलाते हैं जो अंडर वाटर काम करते हैं. तो हमारे पास आयरॉफ टेक्नोलॉजीज करके है, जो इंडिया की कंपनी है जो ऐसे रोबोट्स बना रही है जो डैम के स्ट्रक्चर्स को, पानी कितना क्लीन है नहीं है, कैसे उसे क्लीन करना है, गैस पाइपलाइंस या जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती हैं उनको वेरीफाई करने के लिए, जहाँ ह्यूमंस का जाना बहुत मुश्किल है और इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, वहाँ ये जा सकती हैं. मैं ये भी बताना चाहूंगी कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, जैसे मेक इन इंडिया हो गया या आत्मनिर्भर भारत हो गया.

0: गया जिसके अंतर्गत इस रोबोटिक्स की फील्ड को या एआई की फील्ड को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। नए एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, जो खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि भारत इस दिशा में और आगे बढ़े और बहुत अच्छा करे।
1: रोबोटिक्स का एजुकेशन में क्या रोल है?
0: सो मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, ये मेरी जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। मैं जहाँ पहले काम करती थी एज अ प्रोफेसर, मैं वहाँ काम करती थी, तो वहाँ हम लोगों ने, वहाँ अगेन प्रधानमंत्री योजना के अंदर आप एक गांव को आप अपना अपने अंडर ले सकते हो, एक इंस्टीट्यूट जो एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है या टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, वो एक गांव

0: मीडियम वेव, डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एयर एप्लीकेशन, साथ ही वेव ओटीटी ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजे है। मीडियम वेव पर हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। श्री कुमार आज इंदौर में आयोजित सम्मेलन में 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद कर रहे हैं। इंदौर में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि बीएलओ चुनाव आयोग के आधार स्तंभ होते हैं। मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं से कहना चाहूंगा कि चुनाव कर्मियों ने मिलकर इतना अच्छा एसआईआर का काम किया है। प्रदेश के इंदौर शहर में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएमई बस सेवा के अंतर्गत आज से रूट नंबर I-14 पर 10 इलेक्ट्रिक बसों का तकनीकी एवं व्यावसायिक ट्रायल प्रारंभ हुआ। प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हो गया है। नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मैच आज मैनचेस्टर में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है युवा मित्रों के लिए कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति है।

दोस्तों, शुरुआत करते हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी की। मैं आपके रेडियो दोस्त इशिका, नमस्कार। दोस्तों, हमारे देश में अनेक देशभक्त हुए जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया है। उन्हीं में से एक थे महान क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू। उन्होंने ब्रिटिश शासन के दमनकारी वन कानूनों के खिलाफ आंध्र प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी बहादुरी के कारण स्थानीय लोग उन्हें मन्यम वीरूड यानी जंगल का नायक भी कहते थे। उनका जन्म 4 जुलाई 1897 को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले के पंडरंगी गाँव में हुआ था। उनके पिता एक फोटोग्राफर थे। छोटी उम्र में ही पिता के निधन के बाद उनका झुकाव सन्यास की ओर हो गया। 18 वर्ष की आयु में वो सन्यासी बन गए। सीताराम राजू जी ज्योतिष, आयुर्वेद और घुड़सवारी में भी निपुण थे। आदिवासियों के बीच उनके इस ज्ञान और रहस्यमयी व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव था। दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा 1882 में लागू किए गए मद्रास वन अधिनियम ने स्थानीय आदिवासियों के जंगलों में जाने और पारंपरिक रूप से खेती करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके खिलाफ सीताराम राजू ने आदिवासियों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया, जिसे रंपा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों ने इस

द्रोह को कुचलने के लिए पूरी ताकत लगा दी। अंततः 7 मई 1924 को अंग्रेजों ने उन्हें जंगल में पकड़ लिया और एक पेड़ से बांधकर गोली मार दी। उस समय उनकी उम्र महज 26-27 वर्ष थी। दोस्तों, अल्लूरी सीताराम राजू जी ने कभी भी आदिवासियों के हितों के साथ समझौता नहीं किया और अंतिम सांस तक ब्रिटिश हुकूमत का डटकर मुकाबला किया। अल्लूरी सीताराम राजू और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की तरह देश के युवाओं को भी त्याग की भावना और देश के प्रति प्रतिबद्धता सीखनी चाहिए। दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत कर्मा फिल्म से कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज की आवाज में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये देशभक्ति गीत। कलाकार थी अनुराधा शर्मा। और अब आपको सुनवाते हैं एक लोकगीत जिसके कलाकार हैं पुष्पा गोसाई और सखियां।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पुष्पा गोसाई और उनकी सखियों से ये लोकगीत। और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक और लोकगीत। कलाकार हैं सुनीता पांचाल।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे ये लोकगीत। इस लोकगीत के कलाकार थी सुनीता पांचाल। और इसी के साथ आज का लोक रंजनी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल। शाम के 5:30 होने वाले, अब आप सुनिए दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: नमस्कार। खेल की दुनिया की हर हलचल, हर जीत और हर बड़े मुकाबले के साथ आपका स्वागत है खेल खिलाड़ी में। मैं हूं प्रेरणा शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी वसीम अहमद। लेकर आए हैं आपके लिए ये कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। आज के कार्यक्रम की शुरुआत होगी फीफा विश्व कप 2026 के रोमांचक मुकाबलों से। इसके अलावा क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे T20 मुकाबले की तैयारियों पर रहेगी खास नजर। साथ ही भारत ए और श्रीलंका ए के बीच जारी मुकाबले का ताजा हाल भी जानेंगे। इसके बाद बात करेंगे विंबलडन 2026 के तीसरे दौर की, PSA स्क्वैश टूर, पैरा तीरंदाजी विश्व सीरीज, ISSF शॉटगन विश्व कप की भी बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे अंडर 20 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप की और रहेंगी खेल जगत से जुड़ी कुछ अन्य अहम खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खेल खिलाड़ी की फीफा वर्ल्ड कप की इस खास रिपोर्ट से।
1: दो टीमें 11-11 खिलाड़ियों की, लक्ष्य सामने वाली टीम के खेमे में घुसकर गोल मारना और अपने खेमे में विरोधी टीम को गोल ना करने देना। पैरों की रफ्तार, दिमागी जुनून, जज्बात, किक्स और हेडर से भरपूर फुटबॉल। फीफा वर्ल्ड कप 2026 जारी है और साथ ही आज प्रातः खत्म हुए राउंड ऑफ 32 के मैचेस, जिसने प्री क्वार्टर फाइनल के मुकाबले तय कर दिए हैं। राउंड ऑफ 32 में कल खेले गए तीन मुकाबले ऑस्ट्रेलिया बनाम इजिप्ट, अर्जेंटीना बनाम काबो वर्दे और कोलंबिया बनाम घाना। पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया बनाम इजिप्ट की। राउंड ऑफ 32 के बेहद रोमांचक मुकाबले में इजिप्ट ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली। मैच की शुरुआत में इजिप्ट ने इमाम अशूर के शानदार हेडर से बढ़त बनाई। दूसरे हाफ में ऑस्ट्रेलिया को मोहम्मद हानी के आत्मघाती गोल की बदौलत बराबरी मिली। इसके बाद दोनों टीमों ने कई मौके बनाए लेकिन कोई भी निर्णायक बढ़त नहीं ले सकी। निर्धारित 90 मिनट तक मुकाबला 1-1 की बराबरी पर रहा, जिसके बाद मैच अतिरिक्त समय तक पहुंचा। अतिरिक्त समय में भी कोई गोल ना हुआ और उसके बाद मैच पेनल्टी शूटआउट की ओर बढ़ गया। पेनल्टी शूटआउट में इजिप्ट ने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा। उसके चारों सफल पेनल्टी प्रयास गोल में बदले, जबकि ऑस्ट्रेलिया के दो शॉट गोलकीपर ने रोक दिए और एक अन्य प्रयास भी चूक गया। इजिप्ट के कप्तान मोहम्मद साला ने बेहद आत्मविश्वास के साथ पनन का शाली में गोल दागकर टीम का मनोबल बढ़ाया और अंतिम सफल पेनल्टी के साथ इजिप्ट ने 4-2 से जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया।
2: इजिप्ट, that's how you do it, that's how you win it, they stay in the World Cup and Australia bow out.
1: यह जीत इजिप्ट के फुटबॉल इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि है। पहली बार इजिप्ट ने फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण का कोई मुकाबला जीता है, वहीं ऑस्ट्रेलिया का पहली विश्व कप नॉकआउट जीत

0: का सपना एक बार फिर अधूरा रह गया। अब सभी की निगाहें अंतिम 16 के मुकाबले पर होंगी, जहां इजिप्ट का सामना मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना से 7 जुलाई को होगा। वहीं राउंड ऑफ 32 के अगले मैच में पहली बार खेल रही काबो वर्दे के सामने थी 4 बार की विश्व चैंपियन अर्जेंटीना। इस बेहद रोमांचक मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना ने पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंची काबो वर्दे को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। काबो वर्दे ने अपने जुझारू खेल से अर्जेंटीना को अंत तक कड़ी टक्कर दी और मुकाबले को यादगार बना दिया। मैच के 29वें मिनट में लियोनेल मेसी ने लिसांड्रो मार्टिनेस के बेहतरीन पास को शानदार नियंत्रण के साथ गोल में बदलकर अर्जेंटीना को 1-0 की बढ़त दिलाई, लेकिन 59वें मिनट में काबो वर्दे ने शानदार वापसी की। रायन मेंडेस की सटीक तैयारी पर डेरॉय दुआर्ते ने दमदार फिनिश के साथ स्कोर 1-1 कर दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें बराबरी पर रहीं और मुकाबला अतिरिक्त समय में पहुंचा। अतिरिक्त समय के 92 मिनट में एक सेट पीस पर लिसांड्रो मार्टिनेज ने नजदीक से गोल कर अर्जेंटीना को 2-1 से बढ़त दिलाई, लेकिन काबो वर्दे ने हार नहीं मानी और 103वें मिनट में सिडनी लोप्स क्राब्राल ने पेनल्टी क्षेत्र के बाहर से शानदार कर्लिंग शॉट लगाकर स्कोर 2-2 कर दिया। आखिरकार 111वें मिनट में मेसी के कॉर्नर पर क्रिस्टियन रोमेरो के हेडर को रोकने की कोशिश में काबो वर्दे के डाइनी बोर्जेस से गेंद अपने ही गोल में चली गई। यह आत्मघाती गोल अर्जेंटीना की 3-2 की जीत का निर्णायक क्षण साबित हुआ।
1: An awful lot to ask Cabo Verde to come back yet again. Argentina are through after an almighty scare.
0: यह मुकाबला काबो वर्दे के लिए हार के बावजूद ऐतिहासिक रहा। विश्व कप में पदार्पण करने वाली इस टीम ने पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचकर और मौजूदा चैंपियन को अतिरिक्त समय तक संघर्ष करने पर मजबूर कर पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। वहीं अर्जेंटीना ने लगातार दूसरी बार विश्व कप खिताब की ओर अपने अभियान को जीवित रखा। अब अर्जेंटीना की अगली चुनौती अंतिम 16 में इजिप्ट होगी। इसी राउंड ऑफ 32 क्रम के आखिरी मैच में आज प्रातः कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। मुकाबले का एकमात्र और निर्णायक गोल 14वें मिनट में जॉन एरियास ने किया। डेनियल मुनियोस के शानदार मूव पर लुइस सुआरेस के सटीक क्रॉस को एरियास ने गोल में बदलकर कोलंबिया को शुरुआती बढ़त दिलाई। दूसरे हाफ में कोलंबिया ने बढ़त दुगनी करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ऑफसाइड के कारण एक गोल रद्द हो गया। वहीं घाना ने वापसी का भरसक प्रयास किया, पर कोलंबिया की मजबूत रक्षापंक्ति के सामने उसे सफलता नहीं मिली।
1: And it will be Colombia in Vancouver.

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली तनिया।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

वाणी जयराम के स्वर में ये रचना अभी आपने सुनी। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति के रूप में आलाप देसाई को।

अनूप जलोटा के गाए इस भजन के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये गुना केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज की शाम।

मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, धुन बनाई थी आनंद मिलिंद ने, आवाजें थी उदित नारायण और अनुराधा पोडवाल की, क्षमा कीजिए अलका याग्निक की, और फिल्म का नाम था कयामत से कयामत तक। आज की शाम कार्यक्रम का ये अगला गीत आइए सुनते हैं, अमित कुमार और अनुराधा पोडवाल का गाया हुआ फिल्म बागी से। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, धुन बनाई है आनंद मिलिंद ने।

अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल का गाया हुआ ये गीत था फिल्म बागी से। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म दिल तो पागल है। उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज़ है, आनंद बख्शी के बोल हैं, धुन बनाई है उत्तम सिंह ने।

0: सड़क फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना अनुराधा पोडवाल और मनहर उदास का गाया हुआ। गीत के बोल लिखे थे समीर ने, धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने। और इसके साथ ही आज की शाम कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये गुना केंद्र है, 7 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग का वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
1: 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाला ये केंद्र इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को प्रोत्साहन देते हुए देश की प्रौद्योगिक विनिर्माण यात्रा में

0: 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाला ये केंद्र इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को प्रोत्साहन देते हुए देश की प्रौद्योगिक विनिर्माण यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस संयंत्र में निर्मित चिप का उपयोग कारों, स्कूटरों और कई तरह की औद्योगिक कार्यों में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस केंद्र में निर्मित चिप जापान, अमेरिका और यूरोप भेजी जाएंगी और इससे भारतीय प्रौद्योगिकी को दुनिया भर में पहचान मिलेगी। पूरी तरह चालू होने पर इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप हो जाएगी। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के चरण 2 की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश की सबसे आधुनिक ग्रीन फील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीन फील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने कहा कि पचपदरा रिफाइनरी भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक ऐतिहासिक परियोजना है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 में रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से वर्तमान में लगभग 57 गुना बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वृद्धि रक्षा विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण प्रगति और मेक इन इंडिया रक्षा प्लेटफॉर्म पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को रेखांकित करती है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPF के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्करे तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े थे। मंत्रालय ने कहा है कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। भारत ने इंग्लैंड के साथ दूसरी टी20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 बजे टेक्सास में कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में देर रात 2:30 पर पैराग्वे और फ्रांस आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये गुना केंद्र है। 7:05 हुए हैं। आइए आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले इस सभा के शेष कार्यक्रमों की और साथ ही कल की सभा में प्रसारित किए जाने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी।

सुर्खियों में ये कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 8 बजे। इस कार्यक्रम का प्रसारण हम अपने भोपाल केंद्र से करेंगे। 8:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

अब से कुछ देर बाद यानी 7:21 पर आप सुन पाएंगे प्रायोजित किसानवाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सुनिएगा पशुपालन से अधिक लाभ कैसे लें, इस विषय पर आज की बात। साथ ही सामयिक कृषि चर्चा में खरीफ फसलों में सामयिक कार्य, इस विषय पर आप सुनेंगे जानकारी। और भेंट वार्ता तो आप सुनेंगे ही।

और अब कल की सभा के कुछ प्रमुख कार्यक्रम। कल सुबह 6:45 पर होगा रोक रंजनी कार्यक्रम और कल के कलाकार होंगी उर्मिला पांडे। 7:21 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुबह सवेरे।

सुबह 8:30 पर होगा बच्चों का कार्यक्रम फुलवारी। कल के कार्यक्रम में सुनिएगा चर्चा, बच्चों को अच्छे संस्कार दें। 9:30 पर होगा कार्यक्रम एक फनकार। कल के फनकार होंगे गायक किशोर कुमार।

10:05 पर आप सुन पाएंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो एफएम गुना। शाम 6 बजे होगा सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सुनिएगा चंद भजन।

6:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम आज की शाम। 7:21 पर सुनेंगे आप लोक रंजनी और 7:30 पर होगा ग्राम सभा। समन्वित कार्यक्रम डगर विकास की सुनिएगा 8:15 पर। इस कार्यक्रम का प्रसारण हम अपने भोपाल केंद्र से करेंगे।

रात 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की, जो थे आज के और कल की सभाओं में प्रसारित किए जाने वाले। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये गुना केंद्र है। 7:10 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: विलियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही आरक्रियलाई इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

और लघु उद्यमियों को सशक्त बनाने में एक शक्तिशाली भूमिका निभाती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त प्रदेश के दो दिन के दौरे पर हैं। इंदौर में बूथ लेवल अधिकारियों के साथ किया संवाद।

0: और अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों में हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सहकार से प्रेरित सहकारिता किसानों, महिलाओं और लघु उद्यमियों को सशक्त बनाने में एक शक्तिशाली भूमिका निभाती है। वहीं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता भारत की संस्कृति, सामूहिक शक्ति और आत्मनिर्भरता की नींव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र ने नई गति प्राप्त की है और इसका उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन और सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता आंदोलन आज देश के विकास की प्रमुख धारा बना हुआ है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि खिलौने के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बहुत बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय विज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक खिलौना उद्योग का मूल्य लगभग $120 अरब है, जबकि भारत की हिस्सेदारी केवल 0.2 से 0.3% है। श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि इस क्षेत्र में विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज कहा कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि योजना 100 नए हवाई अड्डों और 200 हेलीपैड के विकास में सुविधा प्रदान करेगी। इससे लाखों लोगों की हवाई यात्रा का सपना साकार होने के करीब आएगा और एक उभरते हुए भारत की आकांक्षाओं को जोड़ा जा सकेगा। समाचारों में वक्त है अब एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook, साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त गणेश कुमार प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। श्री कुमार ने आज इंदौर में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद किया। इंदौर पहुंचने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि बूथ लेवल अधिकारी चुनाव आयोग के आधार स्तंभ होते हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में चुनाव कर्मियों BLO ने मिलकर SIR का काम बहुत किया है।
2: हम मध्य प्रदेश के बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ संवाद करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है, चुनाव आयोग के आधार स्तंभ होते हैं बूथ लेवल ऑफिसर्स, और आपके माध्यम से मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं को कहना चाहूंगा कि इस बार

0: जो भी हमारे चुनावी कर्मियों ने सीईओ साहब के नेतृत्व में डिविजनल कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स, डीआरओज और बीएलओज ने मिलकर इतना बढ़िया एसआईआर का कार्य किया है जिसके ऊपर पूरे देश को नाज है।
1: मुख्य निर्वाचन आयुक्त कल ओमकारेश्वर और महेश्वर के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण भी करेंगे। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने आज रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय परिसर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। मंत्री श्री परमार इसके बाद सीधा रीवा इंजीनियर और रीवा आयुर्वेद कॉलेज की साधारण सभा की बैठक में सम्मिलित हुए। इस मौके पर प्रश्न पत्र चोरी होने के कारण बीटेक चौथे सेमेस्टर की परीक्षा स्थगित होने पर उन्होंने कहा कि परीक्षा स्थगित की गई है, संबंधितों के खिलाफ एफआईआर कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हो गया है। नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बड़वानी और खरगोन जिले सबसे अधिक प्रभावित रह सकते हैं, जहां रेड अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग ने इंदौर और जबलपुर संभाग के जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं देवास, सीहोर सहित 13 जिलों में भारी वर्षा होने का अनुमान है। उद्योग जगत के विशेषज्ञों ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितग्राहकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छतरपुर जिले में परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह की अध्यक्षता में विभागीय योजनाओं एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैतूल के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कल स्कूल बैग वितरण कार्यक्रम में केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके सम्मिलित होंगे। देवास जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू निरोधक माह 1 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक मनाया जा रहा है। पन्ना जिले के प्राचीन मंदिरों और निजी संग्रहों से 64,000 से अधिक प्राचीन हस्तलिखित पांडुलिपियां खोजकर ज्ञान भारतम ऐप पर अपलोड कर दी गई हैं। नीमच के रेडक्रॉस भवन में 6 जुलाई को निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा और धार, खंडवा, रायसेन और आगरमालवा जिला मुख्यालय पर सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता अभियान पखवाड़ा के अंतर्गत आज जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये गुना केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है किसान साथियों का कार्यक्रम प्रायोजित किसान वाणी।

किसान वाणी सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को आशा बहन की राम राम। और किसान भाई बहनों, कैसे हैं आप? आज बरसात की शुरुआत तो भगवान ने कर दी है और आपके खेतन में भी एक दो दिन में बतरान आ ही जाएगी। तो आज हम आपको जो कार्यक्रम सुनवाएंगे उनकी जानकारी दे देते हैं। आज की बात में हम आपसे बात करेंगे, पशुपालन से अधिक लाभ कैसे लें। वहीं सामयिक कृषि चर्चा में हम आपसे बात करेंगे, खरीफ फसलों में सामयिक कार्य। भेंटवार्ता में आप सुन सकेंगे ग्राम गोलाखेड़े के उन्नत कृषक श्री राम प्रसाद जी कुशवाहा से खरीफ फसल के प्रबंधन के बारे में की गई बातचीत और लोकगीतों का आनंद तो आप लोगे ही। आइए शुरुआत करते हैं आज की बात से। विषय है पशुपालन से अधिक लाभ कैसे लें। किसान भाई बहनों, पशुपालन व्यवसाय एक बहुआयामी धंधा है, ये तो आप और हम सभी जानते हैं, क्योंकि आपके खेतीबाड़ी वाले हैं और जहाँ खेतीबाड़ी वाले किसान हैं वहाँ पशुपालन तो करते ही हैं, तो जिसके फायदे ही फायदे हैं। लेकिन इस काम में बहुत सावधानी और समय देने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि देखो भाई बहनों, सबसे पहले तो पशु उन्नत नस्ल के हों तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिसके लिए हमें ध्यान रखना होगा कि उनके आहार के बारे में, मौसम के अनुकूल और उनके रहने की व्यवस्था सही ढंग से आप करें। समय के अनुसार उत्तम कोटि का आहार उनको दें और मक्खी मच्छर से उनका बचाव करें। तो ध्यान देने योग्य बात अब आती है उत्तम नस्ल के पशुओं के बारे में, जैसे गाय। गाय भी कई प्रकार की होती है, देसी गाय, साहिवाल, गिर या थारपाकर नस्ल की गाय, और भैंसों में मुख्य है मुर्रा या जाफराबादी भैंस अधिक दूध देती है। बकरी और मुर्गियों में नस्लें हैं, बकरी सिरोही नस्ल की लें और मुर्गी कड़कनाथ या ब्रायलर, जो कि अंडा का उत्पादन अधिक देती है। और जहाँ तक बात आहार की आती है, तो पशु अधिक दूध देते हैं उनको संतुलित आहार आप दें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खुरपका, महुपका या गलघोंटू जैसी बीमारियों के लिए पशु चिकित्सक से आप अवश्य टीके लगवाएं। और हाँ किसान भाई बहनों, अपने मवेशियों का बीमा अवश्य कराएं, ताकि अनहोनी या बीमारी से आर्थिक नुकसान से बचा जा सके। और मार्केटिंग का मूल्य इतना नहीं मिल पाता।

खाद भी बनाया जा सकता है, जिसकी मांग आजकल बहुत है। केंचुआ खाद भी बनाया जा सकता। देखो भाई बहनों, किसान वाणी के माध्यम से आपको कई बार हम बताते हैं कि रासायनिक खाद की जगह आप अगर जैविक खाद उपयोग करेंगे तो आपकी फसलों का उत्पादन भरपूर होगा और आपकी खेतों की जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी बनी रहेगी, क्योंकि जैविक खाद में जो केंचुए होते हैं वो अपनी जो कि मिट्टी खाते हैं उसके बराबर ही मिट्टी निकालते हैं, और जो मिट्टी निकलती है वो रंध्र वाली भुरभुरी होती है, जो कि जब आप पानी डालते हैं तो उसे सोख लेती है और आपके खेतों की नमी बनाए रखती है। और बायोगैस प्लांट भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि गोबर आपके यहाँ भरपूर होता है, गैस की भी बचत होगी। कई भाई बहनों ने लगवा भी रखे हैं और आप भी ज़रूर लगवाएं। और सरकारी योजनाओं का लाभ लें, जैसे कि सब्सिडी का लाभ लें, और राष्ट्रीय गोगुल मिशन के अंतर्गत डेयरी फार्मिंग शुरू कर सकते हैं आप, जिसमें 33% सब्सिडी मिलती है। मनरेगा या राज्य सरकारों की योजनाओं द्वारा भी पशुओं के पक्का शेड बनवाने हेतु आपको आर्थिक सहायता सरकार प्राप्त करती है, तो आप उसका ज़रूर लाभ लें। और अब हम आगे आपसे बातचीत करेंगे कृषि के बारे में। इसके पहले हम सुन लेते हैं कुछ जरूरी संदेश।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाई बहनों, अभी हमसे आपसे बातचीत कर रहे थे पशुपालन से अधिक लाभ कैसे लें। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे साझा करते हैं सामयिक कृषि चर्चा। विषय है खरीफ फसलों में सामयिक कार्य। देखो किसान भाई बहनों, ये समय अब खरीफ की फसलों का है। अब सभी किसान भाई जिनके खेतों में पानी बरस गया है और वो अब खरीफ की बोनी की तैयारी कर रहे हैं। इन फसलों में धान, मक्का, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंगफली और कपास के प्रमुख फसलें हैं जिनकी बुवाई का ये उचित समय है। इन फसलों के लिए अधिक तापमान और नमी की ज़रूरत होती है। इनकी अच्छी उपज के लिए बीजों का चयन आप अच्छी तरह से करें, होशियारी से करें। साथ ही क्योंकि देखो बीजों का चयन सबसे मुख्य बात होती है। अगर आप किसी भी लाइसेंस शुदा दुकान से बीज लेंगे तो वो अच्छा निकलेगा, उपज उसकी अच्छी होगी, पैदावार उसकी अच्छी होगी। नहीं तो आपको आपके पैसे भी बेकार जाएंगे और आपके बाजार के चक्कर बार बार काटने पड़ेंगे। वहीं कीटनाशक और उर्वरकों की आप बात करें तो आप लाइसेंस शुदा दुकान से ही खरीदें, क्योंकि इससे आपके बार बार आने जाने का समय बचेगा, वहीं पैसा भी बचेगा। कई बार होता क्या है, दुकानदार लोकल दुकानों से ही उर्वरक या कीटनाशक ले लेते हैं या बीज ले लेते हैं, तो उनको बाद में बड़ी परेशानी होती है। इसलिए आप सोच समझ कर बीज का चयन करें। इस समय मानसून की पहली बारिश के बाद खेत की अच्छी जुताई जरूरी है। इसके बाद खेत तैयार करें। बुवाई से पहले बीजोपचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप बीजोपचार करेंगे तो वो अच्छा बीज रहेगा, पोषित रहेगा और सब कीटाणुओं से मुक्त रहेगा, अच्छी पैदावार देगा, जिससे फसल की बीमारियों से बचाव होता है। बीजों को उचित दूरी पर बोएं, साथ ही बीज उचित गहरा में ही बोने चाहिए। उर्वरक और पोषण प्रबंध कैसे करें। बुवाई के समय सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद का उपयोग फसल का बेहतर उत्पादन देता है। अच्छी फसल के लिए मिट्टी की जांच के आधार पर यूरिया और डीएपी के साथ पोटाश का भी अच्छी तरह उपयोग आप लोगों को करना चाहिए। वहीं बात आती है सिंचाई की, तो खरीफ की फसलें मुख्य रूप से बारिश पर निर्भर करती हैं, इसलिए यदि बारिश ना हो तो उचित समय में सिंचाई भी बहुत जरूरी है। और वहीं जल निकास के लिए आप धान को छोड़कर अन्य खरीफ फसलों के लिए खेतों में पानी का जमाव नहीं होने दें, क्योंकि धान में तो देखो किसान भाई बहनों, आप अच्छी तरह जानते हैं कि धान की फसल जब भी अच्छी पैदावार देती है जब उसमें भरपूर पानी भरा हो, और जो भी आपने दूसरी फसलें बोई हैं तो उनमें अगर पानी भराव है तो जल निकासी की व्यवस्था आप जरूर करें। और वहीं खरपतवार नियंत्रण, घास फूस रोकने के लिए बुवाई के बाद पेंडा मेथालीन का छिड़काव जरूर करना चाहिए। इसके अलावा निंदाई गुड़ाई भी समय पर आवश्यक है। कीट और रोग प्रबंधन के लिए खरीफ फसलों में अधिक नमी के कारण फफूंद का प्रकोप अधिक होता है, इसलिए कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर उचित कीटनाशकों को आपको समय समय पर प्रयोग और छिड़काव करना चाहिए। किसान भाई बहनों, अभी हम आपसे साझा कर रहे थे सामयिक कृषि चर्चा। आइए अब आपका करवा देते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं एक प्यारा सा लोकगीत।

0: किसान भाई बहनों, अभी आप सुन रहे थे ये लोकगीत। इसे गाया था भुजबल रेखवार ने और इसके बोल थे सीता राम के बिना राधे श्याम के बिना ये जीरो जीवन है अधूरो घन श्याम के बिना। और आइए हम आपको सुनवाते हैं भेंटवार्ता ग्राम गोलाखेड़ी के उन्नत कृषक श्री राम प्रसाद जी कुशवाहा से खरीफ फसल प्रबंधन के बारे में की गई बातचीत। किसान वाणी सुनने वाले सभी किसान भैया बहनों को आशा बहन की राम राम। आज हम आए हैं ग्राम गोलाखेड़ी और हम बात करते हैं यहाँ के राम प्रसाद जी कुशवाहा से। राम प्रसाद जी राम राम। तो खरीफ मौसम की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, कौन कौन सी फसलें बोते हो आप?
1: हम बोते हैं, देखो अभी कुछ समय है, मक्का, ज्वार, मूंगफली, उड़द, मूंग और उर्दी, ऐसी जी फसलें बोते हैं अपन।
0: अच्छा।
1: हाँ, जैसी अभी ज़्यादातर हम मक्का बो रहा है।
0: अच्छा, तो इसका समय क्या है, सही समय क्या है?
1: सब सही समय बो रही हमारी, इतनी मक्का आ गई,
0: इतनी इतनी आ गई वो भी दिया आपने। अच्छा, तो कब आपने बोई मक्का?
1: मैं आज 12-14 दिन होता है।
0: तो मक्का की कौन पीली बोते हो आप की सफ़ेद बोते हो?
1: पीली बोते, सफ़ेद भी बोते,
0: सफ़ेद भी बोते,
1: दोनों बोते हैं।
0: तो कई लोग आजकल पीली ज़्यादा बोने लगे, तो इसका क्या कारण है?
1: उसका कारण जो तो बीज बड़ा बड़ा आ रहा है, मतलब तरह तरह के नंबर से दें बीज, कभी 36 कहीं को 81-86 ऐसे, मतलब कई वेराइटी आएंगी। तो जो वो अच्छे वो एवरेज देती है वो मक्का 14 को 15 को 13 को 12 क्विंटल को बीघा निकलती है।
0: अच्छा।
1: हाँ,
0: तो अच्छा एवरेज देती है,
1: अच्छी देता है।
0: तो अच्छी पैदावार के लिए खेत की तैयारी कैसे करते हो आप?
1: खेत की तैयारी जैसे अपन ने गेहूँ काट लाए, चना काट लाए, तो उस खेत में अपन ने निकाल लाए सब भुस्सा निकाल लाओ, निकाल के फिर अपन ने पंजाब जुताई कर दी उसकी।
0: अच्छा।
1: जुताई करके डाल दई वो जमीन, तब गई खूब, जैसा अपना पानी गिरा तो पानी अपन ने देख ला कितने बोनी लाख हो गया, तो उस बोनी लाख हो गया तो अपन ने दोबारा पंजा फेर के और मशीन से बो दिया।
0: अच्छा।
1: बो के बढ़िया खाद में लाते DAP, मक्का बढ़िया वेराइटी बीज लाते, 4 दिनों में जा मक्का निकल जाती।
0: अच्छा। राम प्रसाद जी, बीज का चयन और बीजोपचार क्यों आवश्यक है, मतलब बीज में आप दवाई?
1: उपचार जी क्या है, बीज उपचार इसलिए करते हैं, सेठ लोग ही अपन बीज बाहर से ही कर रहे हैं, पैकिंग आया 4 किलो थैली, वो पड़ दी हमें 800 रुपए पड़ी आपकी।
0: अच्छा।
1: एक थैली 4 किलो की 400 रुपए किलो पड़ गई।
0: अच्छा अच्छा।
1: 1400 की, 1500 की, 1300 की सही है, वो बीज उपचार हो गया आती है वहीं से कम्प्लीट, कीटाणु दवा मवाद मिलती है, ऐसी कैसी बो देते हम खाद, सरकारी जो खाद आता DAP खाद डालते हैं। अभी हमारी आप देखो हमारी मक्का कैसे तैयार है,
0: इतनी बड़ी हो गई।
1: हाँ,
0: जैसे पानी ज़्यादा बरस गया और कई किसानों की मक्का बुवाई नहीं हुई या सोयाबीन बुवाई नहीं हुई, तो वो कब तक इंतजार करेंगे?
1: इंतजार फिर बाद में जो अपने वो सीजन आएगा ना, गेहूँ चना धनिया जब ही बोएगा फिर दीपावली के बाद।
0: अच्छा, फिर अब नहीं बो सकते?
1: जब ज़्यादा पानी बरे कहाँ से बोएंगे, ना वहाँ ट्रैक्टर चले ना कुछ चलेगा, और कहीं बता रहा पानी जो मिलेगा तो बो सकते हैं। अभी बो रहा है कुछ लोग जहाँ पानी नहीं गिरा।
0: अच्छा।
1: तो अभी बो नहीं हो रही थी, कल परसों से बढ़िया धना धन।
0: तो कौन कौन सी फसलें आपने बोई है मक्का के अलावा?
1: मक्का के अलावा मूंगफली है, उड़द है, और दूसरे नंबर उड़दी बोलते हैं जो मूंग वाली खाने वाली चीज, ये मूंग है जी, रबी फसल है जी, रबी फसल है जी, वो आ जाती बरसात में।
0: अच्छा अच्छा।
1: और फसल जैसे अपनी जी और पेयर फसल तो बहुत सीजन में बोए।
0: अच्छा।
1: फिर
0: आपने ये मूंग वगैरह आपने बोई थी जो काट ली आपने?
1: वो तो गर्मी की थी, वो कट गई।
0: अच्छा।
1: वो तो खूब बढ़िया भाई, अच्छी भाई। गेहूँ काट के अपन ने नहीं, जा धनिया काट के, लहसुन प्याज ये निकाल के और तुरंत बो दई,
0: तुरंत
1: तो वो बैसाख जेठ में अपनी कट गई, वो निकाल लई और मंडी भी लग गई।
0: अच्छा।
1: वो
0: फसल आप बहुत।

0: समझदार किसान है ना।
1: अपन क्या करें, अपने पास उपलब्ध पानी है गर्मियों में, तो ट्यूबवेल है, कुआ है, तो अपने पास जैसे 5 बीघा में अपनी पूर्ति हो जाएगी। 5 बीघा की बो दे, 10 की बो देते हैं।
0: अच्छा,
1: आप बाम 5 और 6 पानी 7 पानी लगते हैं,
0: तो पानी का प्रबंधन आपके पास भरपूर है।
1: भरपूर है, कुआ है हमारे पास, ट्यूबवेल है, सब है।
0: तो रामप्रसाद जी, जिन किसानों के पास पानी का प्रबंधन नहीं होता वो कहाँ से करते होंगे?
1: जैसे हमारे पास उपलब्ध है, ज्यादातर पड़ोसी है, तो हम उसको दे सकते हैं।
0: अच्छा,
1: या मोल दें या 35 दे दें।
0: हाँ।
1: बास जी बोल देते हैं भैया आधी तेरी आधी हमारी, बोले।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो वो निकाले फसल आधी अपन को दे दो, नहीं पैसा दे दो।
0: हाँ, सभी मिलकर एक दूसरे के सहयोग करते हैं।
1: ऐसा नहीं होगा कि इसको मत बुलाओ, बोले भैया पानी अपने पास है, तो
0: मतलब सभी एक दूसरे का सहयोग करते हैं। गांव में ये बड़ी समझदारी है, सारे किसान सहयोग करते हैं।
1: गाँव में किसान में इतना बढ़िया वो है कि आप हमारे पास नहीं है, दूसरों सहयोग देगा, ले क्या चाहिए तुझे, पैसा चाहिए क्या चाहिए, वो ले ले, वो जल्दी ऐसा हो जाता है। अपने किसान बड़े बड़े किसान भी हैं, तो कहा भैया बोल रहा है कि नहीं भैया और कचू नहीं है, रुपया ले जा खरीद ला फटाफट, बोलो ट्रैक्टर ले जा।
0: अच्छा,
1: छोटे किसान ही बता रहा।
0: हाँ हाँ।
1: तो मदद करते है उसकी,
0: बहुत अच्छी बात है,
1: ये
0: मदद करना भी चाहिए,
1: मदद करते। ऐसा नहीं कि आर अपन ने बोला इसको नहीं, वो नहीं होता हमारा।
0: अच्छा,
1: बहुत बढ़िया फसल। अब जब फरेरी मतलब कम बरसात है, तो मैडम ऐसी मक्का होगी तो आप देखते ही ये भुट्टा लगता।
0: तो बिल्कुल आपके खेत पर हम आए भुट्टे खाने।
1: अरे खूब जी, धन्यवाद। आप
0: तो कब तक आ जाएंगे आपके भुट्टे?
1: अपने जो आएंगे कुंवर के महीना में,
0: कुंवर के महीने में आ जाएंगे।
1: हाँ, दीपावली के पहले पहले फिक्स हो जाए।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, काजू कट भी लगती हैं, काजू भुट्टन पे तो आगे ने जब देखना तुम भुट्टा भुट्टा आदमी वहीं मिलेगा आप अपने खेत के आस पे।
0: अच्छा, तो
1: तैयारी कटाई की करेंगे, काय से काटना है।
0: हाँ, वही
1: क्या
0: वही
1: होना है।
0: हाँ।
1: या तो कोई भुट्टा टोल है खड़ी के।
0: हाँ, हाँ।
1: तो वो भुट्टा टोल के डाला भर के अपनो ढेल लगा।
0: हाँ।
1: ढेल लगा के।
0: हाँ।
1: और बढ़िया रख देंगे और तुरंत हमने करब वो।
0: हाँ।
1: निकाली बाहर।
0: हाँ।
1: कर ले।
0: अच्छा,
1: निकाल के और करब को बाहर फेंक और जुताई कर दे।
0: अच्छा,
1: वो दूसरी खेती तैयारी करना जल्दी।
0: सही बात है।
1: तो बाकी हटा के तैयारी पंजा मंजा फेर के तैयारी कर ले। जो दीपावली को 15 दिन पहले जब दीपावली दूसरी बोनी करते हैं।
0: अच्छा, मतलब सारी जानकारी आपको बहुत अच्छी तरह से
1: है। ऐसा हम तो खेती वो कर रहे हैं, वो जानकारी हम जो बता देते हैं।
0: तो आपने फलदार ये पेड़ पौधे भी लगा रखे होंगे, जैसे जामुन है, आम है।
1: आम हमारे पास है, जामुन है, सब पेड़ है हमारे पास,
0: सब कुछ है।
1: सब
0: तो आप तो
1: बहुत से जामफल बगीचा सरकार लगवा रही।
0: हाँ,
1: वो भी लगा रखे किसानों ने, उनको पैसा भी डालती खाते।
0: अच्छा अच्छा,
1: दिक्कत नहीं।
0: तो आप भी ये लाभ लेते हो सरकार से?
1: सब ले रहे हैं लाभ।
0: बहुत अच्छी बात है, मतलब सरकारी योजनाओं की भी आपको बहुत जानकारी है।
1: पूरी लाभ जो सरकारी कोई सी योजना है, वो योजना अपन लाभ सरकार दे रही, अपन लेने क्या था?
0: बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं पूछ रही हूँ कि आपको बहुत सी जानकारियाँ हैं।
1: सब
0: भगवान। और पानी की भी व्यवस्था है आपके
1: पास? पानी पानी भगवान ने, बहुत पानी है हमारे पास। जो पार्वती नदी है पास में।
0: अच्छा।
1: उससे हमारा बाटा लेवर बढ़ता रहता है।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो वो टूटती नहीं है।
0: हाँ।
1: गाँव में 20-20 पावर की मोटर 25-25-30-30 की डालें, यहाँ से और 10 किलोमीटर तक पानी पहुँचा देते खेतों में लाइन गाड़ के।
0: अच्छा अच्छा।
1: लाइन गाड़ते पाइप लाइन JCP मशीन से अंदर पाइप काटता अपने खेत में निकालना।
0: अच्छा।
1: मास बटन दबाएंगे खेत में ही पानी निकलेगा।
0: कैसा है?
1: इतना बड़ा पैसा खर्च करना पड़ती।
0: सही बात है।
1: सरकार सब्सिडी में हमारे को पाइप देती है।
0: अच्छा अच्छा।
1: सब्सिडी
0: आप मतलब लाभ लेते हो, बहुत अच्छी बात है।
1: खाते में डाल देते
0: हैं
1: भाई, तुम जो खरीदोगे गाड़ लोगे, इसके बाद में फिर वापस ट्रांसफर अपने खाते में वो वापस सब्सिडी डाल देते। लाभ बढ़िया देते, कोई दिक्कत नहीं लाभ।
0: तो आपके ढोर बछेरू में होंगे रामप्रसाद जी?
1: गाय है, भैंसे है, हम तो देखो एक एक गाय एक एक भैंस तो रखना पड़ती है।
0: बिल्कुल सही बात।
1: किसानों को क्यों, फिर सब नंबर गोबर खाद भी बनता है, बाको सबसे बड़ा खाद है गोबर और उर्वरक खाद। अगर 5 बीघा में हमने बेचारा 10 बीघा की फसल निकालता हो।
0: बहुत बढ़िया बात है, मतलब आप जैविक खाद भी बोते हो?
1: जैविक। हमारे पास लहसुन पैदा होता है बहुत ज्यादा, देश

0: देसी और विदेशी चाइना, तो उसका भाव 15,000, 13,000, 20,000, तो ये सब भाव मिलता है उसका।
1: कहते हैं ये रासायनिक जो उर्वरक डालते हैं उससे अच्छा देशी खाद है।
0: देशी खाद
1: सब तो आप बनाते हो घर पर?
0: और
1: कैसे तैयारी करते हो देशी खाद?
0: हमने गड्ढा खोदा,
1: हाँ।
0: एक बड्डा 10x10 फुट का, उसमें अपना जो कूड़ा कचरा गोबर सब डाल दिया।
1: अच्छा,
0: अब वो बरसात में सड़ जाएगा।
1: बिल्कुल
0: सड़ गया, उसका खाद बनता है अपने आप, कैरेक में खाद बन गया।
1: अच्छा।
0: उसको हम बैसाख के महीना में फसल काट के उसको खेत में डालते ट्राली से, जेसीबी से भरवा लो। अब तो गहरापन तो नहीं भरे, जेसीबी लगवाई और डाल भैया ओला रही है खेत, फिर चलेंगे उसे पंजास में ला जाएंगे बढ़िया खेत को। वो खाद से तो मैडम वो सब जो सरकारी खाद खत्म है।
1: वो क्या ज्यादा फायदा करता है देशी जो खाद?
0: एक साल को 10 साल तक वो फसल लेगा, दन्ना हटेगा
1: और खेत भी खराब नहीं होता उससे?
0: ना कहते ही नहीं, बागीचा तो जब खेत खराब का जी दवाई डाल कर ली। अब
1: यही बात मैं आपसे पूछना चाह रही थी, क्योंकि रासायनिक खाद जो डालते हैं उससे खेत की उपजाऊ क्षमता
0: है कि इसकी मिट्टी कमजोर हो जाती है।
1: अच्छा अच्छा,
0: इससे सरकारी खाद से। अब लागत बीघा में एक कट्टा दे रहे हम, ठीक है। अब तुमने दो डालो तो नुकसान ही करेगा ना।
1: बिल्कुल,
0: जब फसल ही नहीं करेगा उसको करेगा अगली वाली। दवाई डालेंगे कचरे वाली या बढ़ा लेंगे वो भी नुकसान करती है। ये क्या है, अब गेहूँ पैदा कर रहा है ये सब खाद को, जो गेहूँ स्वाद नहीं लगा,
1: नहीं लग लगता है, नहीं लगता गेहूँ।
0: हमारा पहले देश की खादे के तुम गेहूँ खा दी, रोटी बना दे खुशबू देता था।
1: बिल्कुल राम प्रसाद जी, अब आपके ही खेत से हम गेहूँ लेकर आएंगे आपके घर से, है ना?
0: हमारे गेहूँ खाना किस तरीके गेहूँ होता है,
1: देशी गोबर की खाद के, है ना? किसान वाणी के माध्यम से किसानों को यही सलाह देते हैं कि रासायनिक खाद नहीं डालें भाई।
0: गेहूँ 13 क्विंटल एक बीघा में,
1: अच्छा
0: 14-15-18 तक को निकले, एक बीघा में 18 क्विंटल।
1: 18 क्विंटल,
0: हाँ, देसी खाद वाला। ऐसा नहीं है कि तो, खेती भी होती
1: है। सही बात है, तो
0: उसकी अपन क्रिया करेंगे, बच्चे की नगर उससे ज्यादा उसकी करते,
1: बच्चे की से ज्यादा देखभाल करते हो आप?
0: देखभाल करते हैं।
1: हमने सुना है कि राम प्रसाद जी के खेत में बहुत सारे फूलों की किस्में हैं।
0: अपने यहाँ अपने एक हमारा ही लड़का करता कुछ भाई,
1: अच्छा,
0: 12 महीना फूल चलता है, मतलब कितने ज्यादा आधा बीघा वो कम से कम 2-2.5 लाख को फूल बेचते।
1: अच्छा, ऐसी बात है।
0: हाँ।
1: तो कहाँ पर आपका बेटा जाता है फूलों को बेचने?
0: फूल बेचना गुना,
1: अच्छा,
0: लुठियाई, राहुल, मंडी लगती है फूल की। अच्छा। बड़ी फर्स्ट क्लास।
1: तो फूलों का क्या बीज लाते हो के बड़े वाले?
0: बीज आता है,
1: बीज, और बीज तैयार
0: बीज करके अपने एक जगह बना ली, उसमें खाद डाला गोबर का, वो बीज बो दिया, उसको उस पे छाया कर दी, कीटाणु देखने कोई खाने जा मच्छर वाला, तो 15-20 दिन तैयार हो जाती पौध, उठा के पटा दे ली अपने। कितने चैटीज लगना, एक हाथ पे,
1: अच्छा,
0: दो हाथ पे, मतलब जैसे पेड़ छिछलेगा इतना हो जाता हो, फिर वो फूटेगा फल्ला फूल देगा। जब देखो आप
1: बहुत खुशी हुई,
0: गंडमन लगा,
1: बहुत खुशी हुई आपसे जानकर कि आपके तो मतलब कितने तरह का, मतलब फूलों की खेती भी करते हो आप और फलदार पौधे भी लगाकर उसको बेचकर आमदनी, मतलब कितने, क्योंकि पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है आज के जमाने में, है ना? मतलब आप बचत भी करते हैं बेचकर।
0: बचत में मैडम जी है कि बच्चे भी अपने सुखी,
1: है ना?
0: अब तो मैडम इतना बड़ा सरकार ने वो के पहले तो हम टपर या झोपड़ियन में रहते।
1: सही बात,
0: अब तो उनने मकान बनवा,
1: मतलब सरकार सुविधाएं तो दे रही है।
0: बड़े बड़े आदमी जैसे उनके पास 50-100 बीघा है, लमसम किसान है, वो कोई दिक्कत तो रही है, छोटे किसान भी हैं, वे भी सुखी हैं।
1: मतलब सरकार भी सब तरह से आपकी सहायता कर रही है।
0: हमें जी छोटे किसान सम्मान निधि मिलती है,
1: अच्छा,
0: और लाडली जो ना लक्ष्मी 1500 रुपये अपने बहु बच्चा बहु ही मिलते हैं, तो वो सरकार को 1500 रुपये कम हो का महीने
1: नहीं होते, कम बहुत होते हैं। सही बात,
0: पहले 15 रुपये नहीं मिला,
1: नहीं मिलते थे। बहुत अच्छी बात है राम प्रसाद जी, आज अपने आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी। मैं आशा करती हूँ सभी किसान भाई इससे बहुत लाभ लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। किसान भाई बहनों, अभी आप सुन रहे थे ये भेंट वार्ता
2: ग्राम गोलाखेड़ी के उन्नत कृषक राम सिंह जी कुशवा से। आइए अब आपका करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं एक प्यारा सा लोकगीत। गीत के बोल हैं, तेने काहे को कटायो बेरी।

0: किसान भाई बहनों, अभी आप सुन रहे थे ये बड़ा ही प्यारा लोकगीत। इसे गाया था उर्मिला देवी ने और इसके बोल थे, तेने काहे को कटायो बेरी चेत लंगुरिया, गोरे से बदन काले पड़ गए। और अब समय होता है आपसे विदा लेने का, क्योंकि घड़ी की सुइयां जो इशारा कर रही हैं समय समाप्ति की ओर, तो स्वीकार करो सभी किसान भाई बहनों को आशा बहन की राम राम। इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: तला बोल रहे
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता चलती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। तो अब पहली वाली बात कहाँ,
2: परम तो सब ही डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल समेत नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जाके खेती शुरू करूंगा।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित किसान वाणी, आकाशवाणी का ये गुना केंद्र है। 8 बजने को है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में, जिसे हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से रिले करेंगे।

0: Surgiome. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की राजस्थान गुजरात यात्रा और विभिन्न विकास परियोजनाओं के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
1: सबसे पहले तो बात इस पर कि राजस्थान के इस दौरे पर प्रधानमंत्री ने जिस तरह की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करते हुए उनका शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए एक नई व्यवस्था की एक नई आधारशिला रखी। आइए सुनते हैं कि भारत की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करने और विभिन्न मेगा परियोजनाओं के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा।
2: चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी और अप्रत्याशित क्यों न हो, नया भारत अपने संकल्पों से न पीछे हटता है और न ही अपनी रफ्तार कम करता है।
1: अशोक टंडन जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
1: पूरे कार्यक्रम को देखें तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि ये सिर्फ विकास परियोजनाओं का कार्यक्रम है या फिर एक विकसित भारत 2047 की जो रूपरेखा लेकर के प्रधानमंत्री चल रहे हैं उस दिशा में बढ़ाया गया कदम है।
3: बिल्कुल आपने ठीक कहा कि प्रधानमंत्री जो कोई भी योजना हाथ में लेते हैं और उनका वो वहाँ पर केवल नींव पत्थर नहीं लगाते बल्कि उनको पूरा होने पर उनका उद्घाटन भी करते हैं। और उसी कड़ी में हम जब देखते हैं कि आज प्रधानमंत्री

0: बल्कि उनको पूरा होने पर उनका उद्घाटन भी करते हैं। और उसी कड़ी में हम जब देखते हैं कि आज प्रधानमंत्री राजस्थान के दौरे पर गए, तो उन्होंने जो है सबसे पहले तो जोधपुर हवाई अड्डे के टर्मिनल के भवन का उद्घाटन किया
1: जी,
0: और जोधपुर में संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ किया, और उसके बाद बालोतरा में गए जहां उन्होंने 1,00,000 करोड़ से भी अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया, उद्घाटन किया और कुछ योजनाओं का शिलान्यास किया। तो ये जो एक हम बात कर रहे थे कि इसमें जो आज जो भी कार्यक्रम हुए उनमें शहरी विकास, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़कों और ये ऊर्जा के नए स्रोत, पावर ट्रांसमिशन, ये सारे प्रोजेक्ट जो थे आज विकसित भारत की ओर जिस तरह से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश जा रहा है, उसी कड़ी में ये अलग अलग योजनाओं का जो आज हमने देखा कार्यक्रम हुआ, और उसमें से मैं समझता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण था कि राजस्थान के बालोतरा जिले में देश के पहले ग्रीन फील्ड इंटेग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को राष्ट्र के नाम समर्पित किया उन्होंने, और उन्होंने इससे भारत के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि भी बताया। तो इस तरह से आज राजस्थान का जो दौरा हुआ उसमें अगर हम बात करें तो एक एक कार्यक्रम को हम ले सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए जो भाषण दिया
1: जी,
0: वो बहुत महत्वपूर्ण था
1: जी।
0: तो प्रधानमंत्री ने सबसे पहली बात भी यही कही कि जो राजस्थान में जो आज मैं ये कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहा हूँ मैं पेट्रोकेमिकल का, क्योंकि आज के संदर्भ में हमारी जो डिप्लोमेसी है उसने जंग में भी ये बात दिखा दी कि पहले हम जो तेल था कम देशों से लेते थे
1: जी,
0: अब हमने अपनी डिप्लोमेसी को देखते हुए उसका दायरा बढ़ाते हुए अब हम 40 देशों से कच्चा तेल मंगवा रहे हैं। तो ये हमारे जो मित्र देशों के साथ संबंध है उसको उन्होंने उजागर करते हुए कहा कि जब पश्चिमी एशिया में युद्ध के दौरान हरमुज बंद हो गया था और दुनिया भर में बड़े संकट आ रहे थे, लेकिन हमारे प्रयासों ने हमें संकट से उबरने के लिए भी मदद की, और इसीलिए पूरी दुनिया में इस लड़ाई के चलते हमारे पर जो असर हुआ भारत ने सही फैसले लिए और सही रणनीति बनाई और अपनी कूटनीतिक ताकत का सकारात्मक इस्तेमाल किया, और इसी वजह से भारत इस संकट से उभरने में सफल रहा। भारत ने संकट का समय रहते आकलन किया था और इसीलिए हम उसमें से उभर कर आए
1: जी। टंडन जी, एक तरफ भारत पेट्रोकेमिकल क्षेत्र का विस्तार कर रहा है तो दूसरी तरफ सौर ऊर्जा जैसी हरित परियोजनाओं में भी बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है, तो ये जो संतुलित ऊर्जा नीति सरकार अपना रही है तो आपको लगता है कि आने वाले वर्षों में भारत के लिए एक बड़ी सामर्थ्य के रूप में उभर कर सामने आएगी?
0: बिल्कुल, जितनी भी योजनाओं की बात हमने की है उसमें जैसे अपने ने बात की अभी उसमें सबसे महत्वपूर्ण तो
1: जी, एक तरफ भारत पेट्रोकेमिकल क्षेत्र का विस्तार कर रहा है तो दूसरी तरफ सौर ऊर्जा जैसी हरित परियोजनाओं में भी बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है, तो ये जो संतुलित ऊर्जा नीति सरकार अपना रही है तो आपको लगता है कि आने वाले वर्षों में भारत के लिए एक बड़ी सामर्थ्य के रूप में उभर कर सामने आएगी?
0: बिल्कुल, जितनी भी योजनाओं की बात हमने की है उसमें जैसे अपने ने बात की अभी उसमें सबसे महत्वपूर्ण तो कि राजस्थान में तो सूर्य देवता की

0: कि राजस्थान पे तो सूर्य देवता की बहुत कृपा रहती है और इसीलिए यहाँ पर जो सौर ऊर्जा का है 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना को उन्होंने आज राष्ट्र को समर्पित किया।
1: बिल्कुल,
0: तो इसे लगभग 5500 करोड़ के निवेश से विकसित किया गया है और इस परियोजना में स्वदेशी रूप से निर्मित 24.22 लाख सौर मॉड्यूल का उपयोग किया गया है। यानी प्रधानमंत्री ने ये जो 300 मेगावाट के बीकानेर सौर ऊर्जा संयंत्र को राष्ट्र के साथ समर्पित किया तो इससे स्वदेशी रूप से निर्मित 7.75 लाख सौर पीवी सेल और मॉड्यूल का उपयोग किया गया है।
1: जी टंडन जी, यहाँ पर प्रधानमंत्री के इस उनकी कही गई इस बात का भी जिक्र करना जरूरी है कि उर्वरक संकट भी देखा गया है बीते दिनों में वैश्विक स्तर पर और दुनिया भर में यूरिया महंगा हुआ, लेकिन भारत में किसानों को सब्सिडी के साथ सस्ती दर पर यूरिया उपलब्ध कराया गया। तो इस तरह के जो फैसले सरकार लेती है, क्या लगता है कि इनका किसानों और कृषि क्षेत्र पर बहुत अधिक सकारात्मक असर पड़ता होगा?
0: मेरा ऐसा मानना है कि ये जो कुल मिलाकर पेट्रोकेमिकल उत्पादन की बात है, इसमें इसमें जो कुल मिलाकर सारा इसमें आत्मनिर्भरता को बढ़ाने की जो बात की गई है, उसी में देखने को ये मिलता है कि पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक पार्क के विकास के एक आधार उद्योग के रूप में कार्य करेंगे। तो इससे उद्योगों में और जैसे आपने कहा कि उर्वरक इत्यादि में भी उनके उत्पादन और हम जो हमारी आत्मनिर्भरता है वो बनेगी। तो कुल मिलाकर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जिस तरह से लगातार इस पर बहुत ही महत्व देते आ रहे हैं और अलग अलग समय पर योजनाओं को लागू करते हैं, तो देश में ऊर्जा संकट जो है और जैसा कृषि में भी हम देखते हैं कि उसमें भी इसकी बहुत आवश्यकता रहती है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण आज जो कार्यक्रम हुआ उसमें हमें ये सब देखने को मिला।
1: राजस्थान में 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए हैं। कहा जा सकता है कि सिर्फ युवाओं के विश्वास को बढ़ाने का एक अवसर नहीं बल्कि प्रशासनिक क्षमताओं को भी मजबूती प्रदान करना, आगे बढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित करना, इस पर भी प्रधानमंत्री का काफी फोकस रहता है, तो आप किस पर क्या विचार होंगे?
0: देखिए, आज जो 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए वो राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में वो चुनकर आए, यानी उनकी नियुक्ति जो हुई इसका अर्थ है कि उन्होंने अपनी क्षमता से उसके टेस्ट पास किए और ये राजस्थान के लगभग सरकार के लगभग सभी विभागों से जुड़े हुए और हम देख रहे थे टेलीविजन पर कि सब नौजवान जो है वो 20 और 25 साल की उम्र के थे और उनको नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री से जब मिले तो वो गदगद हो रहे थे और प्रधानमंत्री ने उनमें से कुछ लोगों से बात भी की। तो ये जो समस्या रहती है कि भारत में जो है हम लोग रोजगार सृजन करने के बारे में बात करते हैं नौकरियों की, तो प्रधानमंत्री का हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम नौकरी पाने की बजाय नौकरी देने वाली बात करें जो स्टार्टअप के जरिए, लेकिन सरकार के पदों पर भी जो नियुक्तियां होती हैं तो राजस्थान सरकार के पदों पर जो नियुक्तियों के आज 54,000 दिए गए नौजवानों को नियुक्ति पत्र वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था।
1: टंडन जी, अब गुजरात की हम बात करते हैं तो गुजरात में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हो रही है, OSAT सेमीकंडक्टर संयंत्र का शुभारंभ होना एक बहुत बड़ी बात है। आइए सुनते हैं आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा।
2: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चीप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। साथियों, 2024 में इस प्लांट का शिलान्यास करने का अवसर मुझे मिला था। 2025 के अगस्त महीने में यहाँ टेस्टिंग चिप्स का काम शुरू हुआ और आज इस प्लांट का उद्घाटन हो गया है।
1: भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ऐसे समय में जब भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में एक भरोसेमंद भागीदार बनाने की दिशा में सरकार प्रयास कर रही है, तो इस संयंत्र का शुभारंभ होना हमारे लिए कितनी बड़ी सफलता होगी?
0: भारत के सेमीकंडक्टर निर्माण क्षेत्र में ये सचमुच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस संयंत्र में जो वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो रहा है ये वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम भी है, क्योंकि ये जो परियोजना है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जो प्रधानमंत्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है, उस मिशन के तहत स्वीकृति पहली 4 परियोजनाओं में से एक है और इसे 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के कुल निवेश से विकसित किया गया है। और अगर ये पूर्ण क्षमता के साथ जब संचालन में आ जाएगा तो इस संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता

0: 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप की होगी और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग में तेजी से हो रहे विकास के कारण मेमोरी और स्टोरेज समाधानों की बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने में सहयोग करेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो ऐसा संयंत्र है ये ऑटोमेटिव औद्योगिक दूर संचार 5G इंटरनेट और इन सब क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता पड़ती है और उस क्षेत्रों के जो ग्राहकों की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करेगा, क्योंकि चिप की कमी के बिना चिप की कमी होने से इन सब क्षेत्रों पर असर पड़ रहा था और अब ये जो संयंत्र ये वेफर सॉर्टिंग असेंबली टेस्टिंग पैकेज डिजाइनिंग और विश्लेषण टेस्ट प्रोग्राम ये सब निर्धारित और इन सब को ये सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग सेवाएं जो है ये जो आज संयंत्र प्रधानमंत्री ने जिसका उद्घाटन किया उनकी सेवाओं को ये प्रदान करेगा। तो ये एक शुरुआत है और इसमें भारत के एक भरोसेमंद और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर विनियम केंद्र के रूप में जो इसका हुआ है ये देश में एक मजबूत और आत्मनिर्भर औद्योगिक इकोसिस्टम बनाने में भी प्रधानमंत्री का जो दृष्टिकोण है ये उसके अनुरूप भी हुआ।
1: जी टंडन जी, गुजरात को वैसे भी व्यापारिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, कई सारी परियोजनाएं लगातार वहां पर काम कर रही है, बुलेट ट्रेन की भी हम बात करते हैं वहां उसकी शुरुआत भी गुजरात से ही हो रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा जो हर बार नई योजनाएं शुरू की जाती नई योजनाओं का शिलान्यास किया जाता उद्घाटन किया जाता है तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए गुजरात की बात तो है ही है क्योंकि गुजरात प्रधानमंत्री का अपना राज्य है, लेकिन जितनी भी परियोजनाएं प्रधानमंत्री ने लागू की है देश के विभिन्न क्षेत्रों में भी सभी का जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। तो जो परियोजनाएं देश की भागों में की गई है चाहे वो पूर्वोत्तर का भाग हो चाहे दक्षिण भारत हो उन सब में जो परियोजनाएं लागू की जाती हैं वो पूरे समय पर ही हुई हैं। तो गुजरात थोड़ा जैसे प्रधानमंत्री पहले भी कहते थे कि हमारा जो क्षेत्र है भारत का वो तो विकास की दर से बहुत आगे है, लेकिन हमारा जो पूर्वोत्तर या पूर्वी क्षेत्र है जिसमें हम देखते थे कि पूर्वोत्तर के राज्य तो सही ही लेकिन बंगाल उड़ीसा ये राज्य पिछड़े थे, बिहार था झारखंड था, उनके भी विकास की दृष्टि से अगर हम देखें तो उन पूर्वी राज्यों को भी अब पश्चिमी राज्यों के मुकाबले में लाकर खड़ा किया गया है और ये सारी योजनाएं जो है हर देश के हर प्रांत में लागू की गई है चाहे वो जम्मू कश्मीर हो चाहे कोई भी राज्य हो इसमें कहीं भेदभाव नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये योजनाएं जब इनका शिलान्यास होता है तो इनको पूर्ण भी इनको इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री उसी समय सीमा के अंदर करते हैं। यही उनका निर्देश भी है कि जो भी मुझसे लोकार्पण करवाना है या जिसका मुझसे आपने नींव पत्थर लगवाया है उसकी योजना को पूरा भी मेरे से ही करवाएंगे तभी मैं उसके लिए आगे आऊंगा। तो ये कुल मिलाकर जो अप्रोच है विकसित भारत की ओर बढ़ने की उसमें सभी प्रदेशों के साथ न्याय हो रहा है और देश का कोई ऐसा भाग नहीं है जिसको ये शिकायत हो कि प्रधानमंत्री जो है उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं।
1: जी टंडन जी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की राजस्थान गुजरात यात्रा और विभिन्न विकास परियोजनाओं के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में
4: FM पर आकाशवाणी का ये गुना केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

कुमार शानू और अलका याग्निक का गाया हुआ ये गीत अभी आपने सुना फिल्म क्रिमिनल से। शब्द रचना इंदिवर की थी, धुन बनाई थी एमएम करीम ने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म सिंग इज किंग से, राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की गाई हुई।

मयूरपुरी के बोल थे, धुन बनाई थी प्रीतम ने। सिंग इज किंग फिल्म के इस गीत को गाया था राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल ने।

एस पी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा का गाया हुआ ये गीत था फिल्म लव से। लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी आनंद मिलिंद ने।

अभिजीत सोनू निगम और अलका याग्निक का गाया हुआ ये गीत था फिल्म हंगामा से। गीत के बोल लिखे थे समीर ने, धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने।

बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक का गाया हुआ यह गीत अभी आपने सुना, फिल्म थी हम तुम। गीत के बोल लिखे थे प्रसून जोशी ने, धुन बनाई थी जतिन ललित ने। और इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

FM 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये गुना केंद्र है। 8:45 होने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के साणंद में सीजी सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, नदियां उफान पर और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। वैभव सूर्यवंशी सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। और विस्तार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में

0: हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूं। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
1: श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 54,000 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये सत्र राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णयों पर केंद्रित होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का रक्षा निर्यात 38,000 करोड़ रूपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये जानकारी दी।
2: आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1,78,000 करोड़ पहुंच चुका है। 7-8 साल 9 साल पहले तक हमारा ये डिफेंस प्रोडक्शन अप्रॉक्सिमेटली 46,000 करोड़ था। डिफेंस एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा 2013 और 14 में यह केवल 686 करोड़ था, जो आज यह बढ़कर 57 टाइम्स बढ़ चुका है।
1: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि संशोधित उड़ान योजना का शुभारंभ भारत की क्षेत्रीय कनेक्टिविटी यात्रा के अगले अध्याय का परिचायक है। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई ये योजना टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में कनेक्टिविटी को और मजबूत बनाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के जरिए मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के प्रमुख और कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने व्यापक पायरेसी की खबरों के बीच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। टेलीग्राम को 15 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। प्रशासन हाई अलर्ट पर है। वर्षा के कारण मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर, गोंदिया, भंडारा, धुले, नासिक और पुणे के कई हिस्से प्रभावित हुए हैं। मुंबई, ठाणे और पालघर में स्कूल बंद करने पड़े। पालघर जिले में बाढ़ जैसे हालात हैं। रायगढ़ में सावित्री, कुंडलिका और उल्लास नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए मुंबई, ठाणे, पालघर और पुणे तथा सतारा के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका की स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमरीका के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी

0: लोकतंत्र सुशासन और लोगों की असीम क्षमता में साझा विश्वास पर आधारित है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैश्विक शांति अभियानों में भारत के दीर्घकालिक योगदान को एक महत्वपूर्ण मान्यता मिली है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में कल संयुक्त राष्ट्र के अधीन सेवारत 651 भारतीय सेना के कर्मियों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के अंतर्गत भारतीय दल की व्यावसायिकता, परिचालन उत्कृष्टता और समर्पित सेवा को सम्मानित किया गया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खमेनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए थे। हवाई हमले में मारे गए परिवार के सदस्यों के साथ रखे गए खमेनेई के ताबूत को देखकर शोक संतप्त लोगों ने प्रार्थना की। ईरान के वरिष्ठ नेता, सैन्य कमांडर और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने खमेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में भारत ने इंग्लैंड को दूसरे T20 क्रिकेट मैच में 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ईशान किशन ने सर्वाधिक 49 और अभिषेक शर्मा ने 43 रन बनाए। भारतीय टीम में संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। वैभव 15 वर्ष 99 दिन की उम्र में भारत के डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 के पहले मैच में आज रात 10:30 कनाडा का सामना मोरक्को से होगा। एक अन्य मुकाबले में तड़के 2:30 पराग्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश में लीवर की महामारी और टाइप 2 मधुमेह से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये रोग अब पहले की तुलना में कम उम्र के लोगों में भी देखे जा रहे हैं। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप विनिर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात के सांणद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमी कंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने समय पर लिए गए फैसलों, प्रभावी कूटनीति और राष्ट्रीय संसाधनों के उचित प्रबंधन से पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत ने रिकॉर्ड 38,000 करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा सामग्री निर्यात की। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने मेजबान इंग्लैंड को 191 रन का लक्ष्य दे दिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

0: इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म हाईवे से, आवाज ए आर रहमान की थी। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत ए आर रहमान का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
4: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
4: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
4: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी ने।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन संगी।
1: हा,

0: भरत व्यास का जन्म राजस्थान के चुरू बीकानेर में हुआ। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद भरत व्यास बीकॉम करने के लिए कलकत्ता चले गए। पढ़ाई के दौरान ही भरत व्यास ने तय कर लिया था कि वो फिल्मी दुनिया में बतौर निर्देशक काम करेंगे। इसीलिए 1940 में वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई कहलाती है। कोशिश तो उन्होंने निर्देशक बनने की, परंतु उनके भाग्य में कुछ और ही लिखा था।
1: अरे कविराजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, कविराजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो। शेर शायरी कविराजा ना काम आएगी, कविता की पोथी को दीमक खा जाएगी। भाव चढ़ रहे नाज हो रहा महंगा, दिन दिन भूख मरोगे रात कटेगी तारे गिन गिन। इसीलिए कहता हूँ भैया ये सब छोड़ो, धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसे जोड़ो।
0: भरत व्यास निर्देशक तो नहीं, गीतकार जरूर बन गए। उन्हें पहली फिल्म मिली 1943 में दुहाई। इसी साल संगीतकार एस के पाल ने उनसे कुल 10 गीत लिखवाए फिल्म प्रेम संगीत के लिए। इस फिल्म में भरत व्यास ने एक दो गीत गाए भी, जैसे मैं आगरे से जूता लाया रे, शांता ठक्कर के साथ इस गीत को गाया, और दूसरा गीत था घायल करके हमसे पूछती हो। अपनी धरती अपना ही आकाश पैदा कर, अपनी मेहनत से अपना ही जहां तैयार कर, ये भरत व्यास के अपने विचार थे। सफलता पाने का उनका यही मंत्र था और इस पर उन्होंने पूरी तरह से अमल भी किया। इसीलिए हिंदी फिल्म संगीत जगत में भरत व्यास ने अपनी कलम, अपने गीतों के दम पर एक अलग पहचान बनाई।

भरत व्यास ने 1943 में एक देशभक्तिपूर्ण गीत लिखा फिल्म स्कूल मास्टर के लिए संगीतकार नीनू मजूमदार के लिए हमारा प्यारा हिंदुस्तान। 1944 में फिल्म मन की जीत के लिए उनके लिखे गीत पॉपुलर हुए। एक गीत शांता ठक्कर के साथ भरत व्यास ने भी गाया छिप छिप कर मत देखो।

0: गोरा गोरा मुखड़ा तनिक देखन दो गोरा गोरा गोरा गोरा मुखड़ा तनिक देखन दो हमरी नजर भर जाएगी हमरी नजर भर जाएगी नजर भर जाएगी नजर।
1: अपने फिल्मी जीवन में भरत व्यास ने लगभग सभी स्थापित और बड़े संगीतकारों के लिए गीत लिखे। भरत व्यास के लिखे गीत भजन सभी बेहद पसंद किए गए।

सन 1950 और 1960 के दशक में गीतकार भरत व्यास ने जिन संगीतकारों के लिए गीत लिखे उनमें कुछ चर्चित फिल्मों के नाम हम आपको बताते हैं। संगीतकार अनिल बिस्वास के लिए बड़ी बहू अंगुली माल,

संगीतकार अविनाश व्यास के लिए अंधेर नगरी चौपट राजा द्वारकाधीश राम लक्ष्मण, संगीतकार बी एन बाली के लिए बागी सरदार।

संगीतकार दत्ताराम के लिए बालक, संगीतकार हंसराज बहल के लिए नखरे, राजपूत, जग्गू, अपनी इज्जत, संगीतकार हेमंत कुमार के लिए सहारा, फैशन।

संगीतकार इकबाल कुरैशी के लिए चा चा चा, जमाल सेन के लिए पतित पावन, कल्याण जी वीर जी शाह इनके लिए बेदर्द जमाना क्या जाने, और सम्राट चंद्रगुप्त।

वसंत देसाई के साथ जिन फिल्मों के लिए उन्होंने गीत लिखे वो सभी की सभी फिल्में बेहद मकबूल रहीं और गीत भी आज तक लोगों की जबान पे हैं। लड़की सह्याद्री की, मौसी, गूंज उठी शहनाई।

हमने यहाँ पूरी लिस्ट प्रस्तुत नहीं की है क्योंकि भरत व्यास के लिखे गीत जिन फिल्मों में हैं, अगर सिर्फ उनके ही नाम लिए जाएं तो भी इस कार्यक्रम का समय कम पड़ेगा।

अनेकों कर्णप्रिय मधुर गीतों के इस रचयिता भरत व्यास ने 4 जुलाई 1983 को मुंबई में अंतिम सांस ली और अपने पीछे छोड़ गए एक सुरीली विरासत।

0: गीतकार भरतव्याज पर केंद्रित आज के इस कार्यक्रम में हमें प्रस्तुति सहयोग मिला आकांक्षा सिंह से। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले, आलेख और स्वर अमरकांत का अब नमस्ते।
1: आज के फनकार।

नमस्कार साथियों, मैं हूं आरती श्रीवास्तव। प्रस्तुत है छाया गीत। शाम ढली और चांद निकल आया, मैंने पलकी मूंदी और तेरा चेहरा नजर आया। हर अंदाज था जुदा, हर अदा थी निराली, बहुत भा रही थी मुझे ये खुमारी। तेरे जलवों में खोया रहूं, तेरी पनाहों में सोया रहूं, तेरी बाहों में ही मेरी रात गुजरे, दिन जो भी गुजरे अब तेरे साथ गुजरे। न वक्त की परवाह है मुझे अब, न जिंदगी की फिक्र है, तू ही मेरी मंजिल है, मेरी सांसों में बस तेरा ही जिक्र है।

0: कल रात मेरे सिरहाने पर चांद का एक टुकड़ा बिखरा हुआ था। शायद ख्वाबों में आकर तुमने ही उसे रखा था। सुबह सवेरे जब नींद खुली तो गुलों की चादर बिछी हुई थी। शायद तुम्हारे कदमों की आहट यहां कैद हो गई थी। दरीचे से बाहर झांका तो आंगन में मोगरे के फूल खिले हुए थे। शायद तुम्हारी मीठी हंसी की गूंज इन्होंने सुनी थी। आज धूप की किरणें ज्यादा ही सुनहरी हैं। शायद तुम्हारी मखमली जुल्फों को छूकर ही वो यहां आई हैं। चांदनी को ओढ़कर जब तुम निकलती हो सरे शाम, सारे दिए जल उठते हैं और दिल पुकारता है बस तुम्हारा ही नाम।
1: न झटको जुल्फ से

अंतराल के बाद आप सबका स्वागत है छाया गीत में। तुम्हारी हसीन यादों का सफर अक्सर मुझे भीड़ में भी तन्हा कर देता है, फिर बस मैं होता हूं और तुम्हारी खूबसूरत याद। तपता रेगिस्तान भी मुझे ठंडी झील सा लगने लगता है और मैं एक मुसाफिर सा उसके किनारे बैठकर तुम्हें सोचता हूं। फिर बस मैं होता हूं और तुम्हारी खूबसूरत याद। जिंदगी जब थकाने लगती है तो तुम्हारी खुशबू का असर कुछ ऐसा होता है कि हर रास्ता छोटा लगता है, हर मंजिल आसान लगती है। मैं चल पड़ता हूं फिर से उठकर तुम्हारी उसी खुशबू और खूबसूरत याद को आंखों में समेटे।

एक रंग तुम्हारी निगाहों का, एक रंग तुम्हारी अदाओं का, एक रंग तुम्हारे लबों का, एक रंग तुम्हारे गालों का। उस रंग में रंगी हो तुम, उस रंग में रंगा हूं मैं, उस रंग में रंगी हैं हसरतें हमारी, उस रंग में उलझी हैं जुल्फें तुम्हारी, उस रंग में रंगी हैं ये वादियां, उस रंग में खिली हैं कलियां। कहते हैं उसे रंग इश्क का, कुछ मदहोशी का, कुछ सुर्ख सा।

आंखों से खींच कर तुम्हारे दामन को, तुम्हारी एक एक अदा को पलकों में कैद कर लिया। तुम्हारे हुस्न के साए में है अब मेरी मंजिल, तुम्हें देखकर तुम में ही मैं जी लिया। जब भी शाम आती है तुम्हारी खुशबू सी महक जाती है, जब भी सुबह होती है तुम्हारी सांसों में धुल जाती है। कभी मोहब्बत की आहटों सी तुम गूंज उठती हो, कभी मत भरी शामों सी बहक जाती हो, कभी गुनगुनी धूप बनकर सहला जाती हो, कभी चांदनी बनकर धड़कनों को बहला जाती हो। पास आती हो तो जिंदगी बन जाती हो, दूर जाती हो तो बंदगी बन जाती हो। छोड़

0: दादी वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत डिजाइन इन इंडिया और मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है। गुजरात के सानंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज का ये कार्यक्रम इस बात का प्रमाण है कि भारत जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सानंद संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। श्री मोदी ने कहा कि ये विकास भारत की जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस वर्ष देश के अंत तक भारत में 5 सेमीकंडक्टर संयंत्र चालू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र केवल 27 महीने में तैयार हो गया। इससे पहले राजस्थान के पचपदरा में प्रधानमंत्री ने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पचपदरा में देश के सबसे आधुनिक ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल राष्ट्र को समर्पित किया। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी तेल, गैस या खनिजों के लिए एक औद्योगिक प्रसंस्करण संयंत्र है। इसे अविकसित स्वच्छ भूमि पर बिल्कुल नए सिरे से बनाया जाता है। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न भागों में लगभग 54,000 नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियंतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियंतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय ने मादक पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है।

एक व्यापक ढांचा है जिसका उद्देश्य रोकथाम, जागरूकता पैदा करना, क्षमता निर्माण, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य जागरूकता, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयातुल्ला सैयद अली खामनेई के 6 दिन का राष्ट्रव्यापी अंतिम संस्कार आज सुबह तेहरान में शुरू हुआ। ईरान के दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हजारों शोक संतप्त लोग एकत्रित हुए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी ऐप पर। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं विराम लेती है। कल प्रातः 5:53 पर हमारे कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।